और दोस्तों, प्यार में तो कभी कभी छोटी बात से बड़ी बात हो जाती है, आपको तो मालूम है। और कभी कभी प्यार में लोग भूल जाते हैं कि कौन से बात वो करते हैं, कब करना चाहिए कब नहीं करना चाहिए। तो ये सब बात है हमारे यारो। तो हम चलते हैं अगला गीत की ओर, वो है ओ साथी रे।

0: जीना है और रेडियो फाहुन के बिना कैसे रात कटेगी। तो हम चलते हैं एक रोमांटिक सॉन्ग किशोर जी के आवाज में।
1: हाँ
2: या चुप रहूं
1: ना,
2: दिल में मेरे आज क्या है
1: क्या है,

और दिल की टुकड़ी टुकड़ी करके और मुस्कुरा के चले गई। उसके बाद पे हम एक और गीत को सुनाते हैं।

0: हाथ डाल, ऐ गुल चेहरा परी जमाल, मुद्दत से दिल उदास दादा दास है, तेरे होठों की प्यास है, ऐ दिल पर मेरे लब पर कब छलकेगा तेरे लब का जा जा जा आम।
1: अरे जाम, तो ये बात है दोस्तों
2: गाने को है।
1: और दोस्तों जॉनी नंबर वन है हमारा नाम, और आज फिर हम आ गए हैं कुछ पुराने गीतों की संगम बहार लेके। तो फरमाइश श्री मोहम्मद रफी का गाना है, रफी के गाने आपको हम आज कुछ सुनाएंगे। और ढल चुकी शाम, एक गम मुस्कुराने के

पुराने कुछ नए गीतों से आज हम आप लोग को सेवा करेंगे हमारे यारों, हमारे दोस्तों। हम चलते हैं अगला गीत की ओर। हम हमसे मोहब्बत करके कुमार शानू साधना सरगम का ये गीत है।

और दोस्तों हम उनसे मोहब्बत करके और मोहब्बत करके अगर मोहब्बत हो जाते हैं तो क्या होते हैं हमारे यारो, क्या होता है उसके बाद हम और एक गीत की ओर बढ़ते हैं, वो है तेरी याद दिल से और भुला ना पाए। फिल्म का नाम है हरियाली और रास्ता 1966 का, जिसमें मनोज कुमार, माला जीना, हेलन ने काम किए हैं।

और तेरी याद दिल से भुलाने चला हूं, जब किसी से नफरत हो जाते है, झगड़ा हो जाते है, तो लोग उसके याद भुलाना चाहते है। उसके बाद हम चलते हैं अगला गीत की ओर। और वो होगा मत कर इतना गुरूर, जो कभी कभी लोग कितनी गुरूर करते हैं हमारे दोस्तों। अलका याग्निक पंकज उदास की ओर हम चलते हैं। और आओ मिल्क सुना जाए, मूवी का नाम है आदमी।

गुरूर दोस्तों, मत कर इतना गुरूर। फिल्म के नाम है झनकार का यागनी, पंकज उदास का गाया हुआ सॉन्ग है। इस फिल्म में रीना रॉय और गोविंदा ने काम किए हैं हमारे यारो। उसके बाद हम अगला गीत की ओर बढ़ते हैं। कुछ नए और कुछ पुराने गीतों के बहान प्रोग्राम हमारा चलेंगे। तस्वीर तेरी दिल में, तस्वीर कब लोग दिल में उतारते हैं, ये किसी से बेहद बहुत बेहद दिल से और उससे प्यार करते हैं। नाइटी गेल्ला था जी, परमाश्री मोहम्मद रफी का सुपर हिट सॉन्ग देवानंद मालधान सिन्हा का ये सॉन्ग है। आप सुनते रहो।

और तस्वीर तो तेरे दिल में आती ही रहेंगे। और नाइट के लता जी परमा श्री मोहम्मद रफी का गाया हुआ सुपर हिट सॉन्ग है दोस्तों। तो प्यार भरी गीतों की बहान प्रोग्राम हमारा।

की रूठ आई। और उसके बाद हम चलते हैं अगला गीत की ओर। और अगला गीत क्या है हमारे यारो, आज हम कुछ लवली सॉन्ग के मूड में हैं। और लवली सॉन्ग कब होता है, जब प्यार बढ़ जाता है। तो हम चलते अनुराधा पौडवाल उदित नारायण की ओर। अब भी या महिया, अब देखो भैया क्या है।

और आपकी आ जाने से कभी कभी बहार हो जाता है और बहार के बाद में कभी कभी मार भी हो जाता है। ये तो प्यार में चलते हैं हमारे यारो, हमारे सुनने वालों, उसके बाद तो हम चलते हैं और हम तेरे बिन कहीं रह नहीं पाते हैं, और हम तेरे बिन कहीं रह नहीं पाते हैं। आओ मिलकर सुना जाए।

अपनी प्यार भरी गीतों के बिहार जोंग और प्रोग्राम लेकर चलेंगे दोस्तों। इस गीत का है देखा है पहली बार और मूवी के नाम है जाजन अलका याग्निक और एसपी बाला सुब्रमण्यम का रोमांटिक सॉन्ग।

और मूवी का नाम है साजन, और कुछ हिट सॉन्ग आप लोग को हम आज सुने। तो हम चलते हैं अगला गीत की ओर।

और दत्त करने को ये सॉन्ग थे। और हम चलते ही दोस्तों, आप लोग जानते ही यार नीघ तक का सोन, और वो कुछ और थे और इन गोल तो और कुछ है दोस्तों। और जो नया नया गीत है वो तो भी अपनी जगह पे भी वो ठीक है, लेकिन हम चलते हैं यार नीघ तक का जोन, और वो है बहुत प्यार करते हैं और करते ही रहेंगे। मोफिक राम है साजन।

भी प्यार करते हैं, तुझको जन्म तार आया है लेवाड़े से दोस्तों। मैं दीवाना मस्ताना और मैं दी मुगेश का ये सॉन्ग है।

ये बहुत पुराना गीत है और करोड़ों को दिल चुराने वाला वो है मैथिली मुकेश का ये सॉन्ग है। और इस फिल्म में दोस्तों बहुत पुराना फिल्म है 40 Days का ये मूवी सॉन्ग है जो आम सब के लिए हमने चला दिया है। इसमें प्रेमनाथ ने काम किया है शकीला के साथ। तो दोस्तों तो प्यार का सुहाना जफर आपको सुनाएंगे, मुकेश एवरग्रीन्स मेलोडी सॉन्ग है, ओल्ड हिंदी रोमांटिक सॉन्ग आपको हम यहां से सुनाएंगे। और गीत है इस फिल्म में दोस्तों, लेकिन आपको हम सुनाएंगे प्यार का सुहाना जफर है।

अभी अपना दिल उसी को दीजिए जिस इस तुम्हारे दिल के काबिल है। तो काबिल के बांज करते हैं तो हम चलते हैं मौफी के नाम है भरोसा निकटी हो द्रियन जस्तक का ये फिल्म है और गुरुदत्त और आशा परेख ने इस मूवी में सुपरहिट फॉलो फिल्म है जिसमें काम किया है। आओ मिलकर सुना जाए दोस्तों।

0: tip.
1: Zo, die kan wel een cool best prot.
2: Yes, dosto. तो ये कुछ बीच बीच में कभी कभी अच्छे अच्छे गीत सुनाने के मूड में हम हो जाते हैं, और जब गीत सुनाते हैं तो कभी कभी दिल भी रो देते हैं हमारे दोस्तों।

तारीफ करते हैं गुरुदत्त और आशा पारेख ने। भरोसा मूवी के नाम है निकटी द्री एंसेस्टर का बदमाश श्री मोहम्मद रफी का ये गया हुआ जोंग है। दोस्तों हम चलते हैं अगला अगला अगला अगला जोंग की ओर है।

ऐ दिल मुझे भी आ बता दे तू किस पे आ गया है, अगर आपके दिल किसी पे आ गया है तो जरूर बता देना।

इस मूवी में और फिल्म के नाम है अंदाज 1949 का ये सॉन्ग है जिसमें दिलीप कुमार ने काम किए हैं और राजेंद्र कुमार ने काम किए हैं नौशाद के साथ में हम चलते हैं एक और सॉन्ग आशा भोसले मधुबाला अशोक कुमार इस फिल्म में काम किए हैं हावड़ा ब्रिज

मूवी के नाम थी हावड़ा ब्रिज। एक और अगला सॉन्ग किम जैसे दूर कोई गाए धुनिए।

दूर कोई गाए धुनिए सुनाए और मेरे मने और क्या क्या है दोस्तों, ओल्ड एंड गोल्ड का ये सॉन्ग है, ये सॉन्ग

फूल को भी तुझको, रफी जी की, मोहम्मद रफी जी का ये सॉन्ग है। इस मूवी में हीरो था अजीत भाई, जो विलन के रोल अब लोग अब वो करते हैं। तो निकट इंद्रिय से स्टका ये सॉन्ग था। तो अगला गीत की ओर हम चल, ये गीत जो है नहीं किया तो करके देख, मेरे ख्याल से इस गीत को हम पहली बार सुन रहा हूं। नहीं किया तो करके देख, और ये है नाइटिंगेल, नहीं नहीं मुकेश का ये सॉन्ग है, करोड़ों का दिल चुराने वाला, द हार्ट ऑफ द मिलियन, माइटी मुकेश का ये सॉन्ग है। और मूवी का नाम है चार दिल चार रहे, और 1900 का, 1950 का ये सॉन्ग है दोस्तों। आओ सुना जाए।

करके देख, ये तीतल तो बहुत मस्त है भैया, और ये है हाथ जाओ दीवाने आए, मूवी का नाम है सिंगापुर, ऑल इज गोल्ड, फोर

हट जाओ और दीवाने आए, और कौन सा दीवाना आएंगे, हम आप लोग के लिए हम छोड़ देते हैं। और सुना जाए माइती मुकेश का ये सॉन्ग है।

और ऐसा ठुमक के मत चलो, ऐसा ठुमक के मत चलो कि आपको ठुमका लग जाए। तो ये गीत बहुत यानी कि मशहूर है दोस्तों, और ये है दिल तेरा दीवाना।

0: और नजर बचा करी चली गई वो, और क्या क्या गाया है, मशहूर सॉन्ग था हमारी दोस्तों।
1: भविष्य की तैयारी के लिए अतीत का उपयोग करें, लेकिन अपने अतीत को कभी भी अपना भविष्य निर्धारित न करने दें। अगर आप खुद पर भरोसा करना सीख लेंगे मित्रों, तो आप जीवन में ज़्यादा खुश रहेंगे। अपने आप से प्यार करें और हमेशा स्वतंत्र रहे। और मित्रों, ताकत और पैसा महान संसाधन है, यदि वे आपके दिमाग में प्रवेश करते हैं तो भयानक अहंकारी बन सकते हैं आप, तो इससे थोड़ा बच के रहें मित्रों, बच के रहें।

अपनी गलतियों को देखने के लिए विनम्र बने मित्रों, उन्हें स्वीकार करने के लिए साहसी और उन्हें सुधारने के लिए पर्याप्त बुद्धिमान बने। और रिश्ते निभाना हर किसी के बस की बात नहीं है, नहीं होती है। किसी और की खुशी के लिए आपको अपना दिल दुखाना ही पड़ेगा मित्रों। इसके लिए वास्तव में आपके पास एक साफ दिल होना चाहिए और भगवान का आशीर्वाद भी होना चाहिए।

सज्जनों, जैसे दिन और रात बदलते हैं और परिस्थितियां अपने आप बदल जाती है, मौसम बदल जाता है और उसके साथ ही कांटे और फूल भी अपने आप बदल जाते हैं, तो अब आप थोड़ा समझदार हो गई हैं और देखते हैं कि मौत आपके सामने खड़ी है। दोस्तों, इस दुनिया में समय के साथ सब कुछ बदलता है, सब कुछ बदलता है और बदल जाता है। जो डाली आज खाली है उनमें कल फूल लगेंगे। जीवन एक बहती नदी की तरह है मित्रों, जिसके अच्छे और बुरे दो किनारे हैं, दो किनारे हैं।

मित्रों, यदि आप जानबूझकर या अनजाने में किसी शराबी या ऊंच पद के व्यक्ति के साथ जुड़ते हैं तो क्या आप प्रभावित होंगे या नहीं? मिट्टी के तेल से भरा डब्बा जिसका ढक्कन खुला हो और भले ही आप पास जाकर आगे न बैठे हों उसके साथ में, फिर भी तुम्हें तीखी गंध आती है या नहीं? मित्रों, और इसी तरह सिद्ध भक्तों के मामले में भी, सही व्यक्ति के मामलों में भी, यदि कोई ऐसे लोगों के संपर्क में जुड़ते हैं तो क्या उनके अच्छे प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा? जरूर पड़ेगा ना, जरूर पड़ेगा, और इसका फल अवश्य भी मिलेगा। कुत्ते और बिल्ली से प्रेम करते हैं लोग, तो क्या आप भगवान से प्रेम कर नहीं सकते हैं? भगवान से जुड़ नहीं सकते हो? सोचो जरा, सोचो।

एक बार फिर यहाँ से आपको हार्दिक से स्वागत किया जाता है। इस बार यहाँ से आपके स्पॉन्सर भजन कार्यक्रम आरंभ करने को जा रही हूँ। वक्र तुंड महाकाया सूर्य कोटि सम प्रभा निर्विघ्नम कुरु मे देवा सर्व कार्येषु सर्वदा। आकाशवाणी रेडियो फाउन के सुनने वालों, प्रिय आत्माओं, प्रिय भक्त जनों, स्वीकार कीजिए सेविका शांता की प्यार भरी नमस्कार। आज से बेहतर कुछ भी नहीं, आज से बेहतर कुछ भी नहीं, क्योंकि कल कभी आता नहीं और आज कभी जाता नहीं। सभी को हार्दिक से स्वागत है स्पॉन्सर भजन कार्यक्रम में। आरंभ को करने जा रही हूँ देन हाग लेस्कफेन फोर पार्क से। देन हाग लेस्कफेन फोर पार्क से बाउ एंड अंडरहाउस बदरेव, बाउ एंड अंडरहाउस बदरेव, इनका मालिक जो है श्रीमान हरिदत्त रोहित देव नारायण जी, इनके तरफ से हम यहाँ से आरंभ को करने जा रही हूँ हनुमान चालीसा।

जय जय हो। उदित नारायण जी की आवाज में यहाँ से हमने श्रवण की है। आज के प्रोग्राम में हनुमान चालीसा के साथ आरंभ किया गया है। जो शुभ कार्य आज कर सकते हो, जो शुभ कार्य आप आज कर सकते हैं, उसे कल पर ना छोड़ो। कौन जाने कल कब आएगा, आए भी तो ना जाने उस समय परिस्थितियाँ कैसी होगा, उस समय परिस्थितियाँ कैसे होगा। तो जो आज करना है तो अभी कर लो, जो अभी करना है तो अभी आज कर लो। पेश किया गया है दनाखलाइस का फिल फोर पार्क से ऑनर हाउस बद्रेव। इनका मालिक जो है श्रीमान हरिदत्त रोहित देव नारायण, इनके तरफ से हनुमान चालीसा के साथ आज स्पॉन्सर भजन कार्यक्रम आरंभ किया गया है। दनाखलाइस का फिल फोर पार्क से इस बार है आनंद अर्जुन शर्मा खरोथांदल बेफे के साथ सुनेंगे हम गणेश जी की आरती।

गणेश जी की सुंदर सा भजन यहाँ से हमने श्रवण की है, पेश किया गया है दनहा खलैस कफेन फोर पार्क से आनंद अंजु शर्मा खरोधान बेफी के तरफ से। दनहाक से श्रीमती लन बाबू राम जी के तरफ से हम यहाँ से श्रवण करेंगे एक बार फिर सुंदर सा गणेश भजन। बेहतरीन कल के लिए, बेहतरीन कल के लिए आज को बेहतर बनाना पड़ेगा।

अति सुंदर, अति सुंदर। बिना स्वार्थ किसी का भला करके देखिए, बिना स्वार्थ किसी का भला करके देखिए, आपके तमाम उलझने ऊपर वाला सुलझा देगा। पेश किया गया देन हाँ के रहने वाली श्रीमती लेन बाबू राम जी की तरफ से। देन आखलास के फेन फोर पार्क से इस बार है बाव एंड ओनर हाउस बद्रेफ। इनका मालिक जो है श्रीमान हरिदत्त रोहित देव नारायण, इनके तरफ से सुनेंगे।

सुंदर गणेश भजन आपके लिए पेश किया जाता है आपी का स्पॉन्सर भजन कार्यक्रम जो फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से हम यहाँ से आपके लिए प्रस्तुत कर रही हूँ। शब्द शब्द में ब्रह्म है, शब्द शब्द में ब्रह्म है, शब्द शब्द में सार है, शब्द शब्द शब्द ऐसा कहो जिसमें उपजे प्यार। पेश किया गया है दनाखलास कफेन फोर पार्क से बाव एंड ऑनर हाउस बद्रेव, इनका मालिक जो है श्रीमान हरिदत्त देव नारायण के तरफ से हमने श्रवण की है। आपको लेकर चलते हैं दनहाख के रहने वाली श्रीमती लिलियन मोतीराम जी के तरफ से। शुभ प्रभात कहते हुए सभी को

अति सुंदर अति सुंदर, चलो खुशियों का जाम हो जाए, लेके बप्पा का नाम कुछ अच्छा काम हो जाए। पेश किया गया है दनाक से श्रीमती लिलियन मोतीराम जी की तरफ से, सभी को एक शुभ दिवस, मंगलमय जीवन, मंगलमय जीवन और मंगलमय दिवस पेश कर रही है। सुरीनाम लिफोर्नो मैन का नाम हुक इंदिरा गांधी वैक्सीन, श्री भक्त राज शिव पार्वती मंदिर से, श्री पंडित सुभाष महावीर खूबसूरत दिवस में भजन माला कार्यक्रम में शुभ प्रभात के।

0: Fronteer.
1: Sunder, Ati Sunder. पेश किया गया है श्रीनाम लिफोनो मैन कंडाम हुक इंदिरा गांधी वैक से श्री भक्तराज शिव पार्वती मंदिर से श्री सुभाष महावीर श्री पंडित सुभाष महावीर के तरफ से खूबसूरत दिवस में सुप्रभात और मंगलमय दिवस हम सभी को कह रहा है। अच्छे ख्वाबों के साथ सोना और नए उम्मीदों के साथ जागना। देन्हा मकाइस्रात नंबर 6 से फाहोन हिंदू भाषा स्कूल फरेनखिंग अलगमेन हिंदू ऑनदरवाइस के तरफ से

के दाता गजाधन श्री गणेश श्री गणेश श्री गणेश आप सभी को गणेश जी की कृपा से हर दिन फलदायक हो हम सभी का पेश किया गया दनहाखमा का इसरात नंबर 6 से हिंदू बासो स्कूल फाहुन फरेनखेन अलखमेन हिंदू ऑनरवेस नीदरलैंड के तरफ से आगे चलते हैं सुनने के लिए हेकनुटरस्ट्रैट देना हेकनुटरस्ट्रैट नंबर 10 से संस्था हिंदी प्रचार जो परिवार चांगुरबिन के निर्देशों में श्रद्धा भक्ति के साथ।

अति सुंदर, एक बार फिर अति सुंदर अति सुंदर। प्रथम पूज्य भगवान गौरी पुत्र गणेश जी की कृपा से आपका हम सबका दिन सुखद में और मंगल में रहे। पेश किया गया है नंबर 10 से संस्था हिंदी प्रचार। संस्था हिंदी प्रचार जो परिवार चांद गुरबिन के निर्देश में है, आपको लेकर चलते हैं इस बार रोटरडाम। रोटरडाम हॉगवलीट टेक्सासवेग नंबर 5 से श्री विष्णु मंदिर संस्था जागृति संस्था हिंदी सेवा संघ श्री गंगा माता मंदिर साथ में रोटरडाम वेस्ट ब्लॉक माकर स्ट्रात 64 तक से श्री सरस्वती माता भवन से मंडली सभापति श्री पंडित राजकुमार महातम जी के तरफ से शुभ प्रभात और एक शुभमय दिवस, एक शुभमय जीवन हम सबको अवश्य इनके लिए प्रार्थना करता है।

मंत्र पुष्पांजलि यहाँ से हमने श्रवण की है। हर सुबह एक नई शुरुआत होता है, हर सुबह एक नई शुरुआत होता है, एक नई आशीर्वाद, एक नई आशीर्वाद, एक नई आशा है। सुख सुबह जैसा होता है, मांगने पर नहीं पर जागने पर मिलता है। पेश किया गया है रोटरडैम होपफुली टेक्सास वेक नंबर 5 से श्री विष्णु मंदिर संस्था जागृति संस्था हिंदी सेवा संघ श्री गंगा माता मंदिर से और रोटरडैम वेस्ट ब्लॉक मार्केटस्ट्रैट से श्री सरस्वती माता भवन से मंडली सभापति श्री पंडित राजकुमार महाथम जी की तरफ से ये सुंदर सा पुष्पांजलि मंत्र पेश किया गया आपके लिए। फाहोन रेडियो की स्टाफ डायरेक्सी पर्सोनल सभी फ्राइवेलर्स की तरफ से मेरे प्यारे सुनने वालों तोहफा के रूप में सभी स्पॉन्सर सभी सुनने वालों सभी भक्त प्राणियों के वास्ते

हाँ हाँ जाने जाने हनुमान जी। अच्छे ख्वाबों के साथ सोना और नई उम्मीदों के साथ उठना जागना, और इसके बाद तो गणेश जी की कृपा हर दिन हम सब पर फलदायक दे। पेश किया गया फोन रेडियो की डायरेक्ट स्टाफ पर्सनल के तरफ से और सभी फेरेवेल अखर के तरफ से मेरे प्यारे सुनने वालों, तोहफा के रूप में सभी स्पॉन्सर, सभी सुनने वालों, सभी भक्त प्राणियों के वास्ते आपके सेवा में पेश किया गया है। सभी भक्त प्राणियों के वास्ते, सभी सुनने वालों के वास्ते भजन माला कार्यक्रम को तमाम खुशियाँ खुशनसीबियाँ पेश किया जाता है। स्पॉन्सर भजन कार्यक्रम सुनने के लिए आपको दिल से धन्यवाद किया जाता है, और स्वीकार कीजिए सेविका शांता की प्यार भरे नमस्कार। एक शुभमय दिन, एक शुभमय दिन हो, शुभ प्रभात, मंगलमय दिवस होवे।

वक्रतुंड महाकायासुर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आकाशवाणी रेडियो फाउन के सुनने वालों, प्रिय भक्तजनों, प्रिय आत्माओं, आप सभी को हार्दिक से स्वागत है आज इस खूबसूरत दिवस पर। आज से बेहतर कुछ भी नहीं, आज से बेहतर कुछ भी नहीं, क्योंकि कल कभी आता नहीं और आज कभी जाता नहीं। स्वीकार कीजिए सेविका शांता की प्यार भरी नमस्कार। यहाँ से आरंभ करने को जा रही हूँ आप ही का स्पॉन्सर भजन कार्यक्रम। ये आशा उम्मीद है कि आप जहाँ भी हो, जैसे भी हो, जरूर से खुशहाल में होंगे।

भजन चालीसा के साथ यहाँ से आरंभ किया गया है। स्पॉन्सर भजन कार्यक्रम और पेश किया गया है दनाख मकाइसरात नंबर 6 से हिंदू बास स्कूल फाहन फरेनखिंग अलगमेन हिंदू अंडरवेस के तरफ से। Den Haag Kneuterstraat, Den Haag Kneuterstraat nummer 10, Sansta Hindi Prachar, Sansta Hindi Prachar. Jo Parivar Chan Gurmin ke Nirdesh mein hai, Suprabhat Shraddha Bhakti ke saath yahan se hum Shravan karenge.

पेश किया गया है दनहा खेक न्यूटो स्ट्रैट नंबर 10 से संस्था हिंदी प्रचार जो परिवार चांद गुरबिन के निर्देशों में है। शुभ प्रभात कहते हुए दनहा लाइस कफेन फोर पार्क से आनंद अर्जुन शर्मा क्रोध हांडल बेफे के तरफ से।

पेश किया गया है द नागलाइस कफेन फोर पार्क से आनंद अर्जुन शर्मा ग्रोथ हैंडल इन बेफे। आपको लेकर चलते हैं हम मेरे प्यारे सुनने वालों रोटरडाम हॉगवलीट टेक्सस वेग नंबर 5 से संस्था जागृति संस्था हिंदी सेवा संघ श्री गंगा माता मंदिर साथ में रोटरडाम वेस्ट ब्लॉक मार्करस्ट्रैट 46 से श्री सरस्वती माता भवन से मंडली सभापति श्री पंडित राजकुमार महातम जी के जरिए से श्रवण करेंगे हम।

अति सुंदर यह शिव भजन हमने श्रवण कर ली है। और वो भी पेश किया गया है रोटरडम हॉगफ्लिट टेक्सस वेग नंबर 5 से श्री विष्णु मंदिर संस्था जागृति संस्था हिंदी सेवा संघ श्री गंगा माता मंदिर साथ में रोटरडम वेस्ट ब्लॉक मार्कर स्ट्रात 7 फेयर तक से श्री सरस्वती माता भवन से मंडली सभापति श्री पंडित राजकुमार महातम जी के तरफ से शुभ प्रभात कहते हुए सभी सुनने वालों के लिए पेश किया गया। Den Haag Leiskafé in Voorpark se Zondag Groothandel in groente en fruit. इनका मालिक जो है श्रीमान परशुराम मोहनलाल के तरफ से

0: अवश्य अवश्य भजन करो भाई। पेश किया गया है धनाखलाइस कफेन फोर पार्क से सुंदर ग्रोथहांडल। सुंदर ग्रोथहांडल इन ग्रोंते एंड फ्रूट, इनका मालिक जो है श्रीमान परशुराम मोहनलाल के तरफ से ये सुंदर सा भजन भजन करो भाई हमने यहाँ मिलकर और श्रवण कर ली है। मेरे प्यारे सुनने वालों, आपको लेकर चलते है देना गमेंट राजसलेट, गमेंट राजसलेट श्रीमती लेना बाबू राम जी के तरफ से हम लोग यहाँ मिलकर चलो मिलकर और अपना मन पवित्र करें।
1: तो भैया लोग, स्वामी तुलसीदास के कथा कहाँ से शुरू भर रचावे के रामायण, कैसे वो प्रेरणा पहले बांटे और कैसे वो प्रेम में अपन स्त्री के प्रेम में कैसे लीन रहते हैं, तो बाबा हमारे पिताजी श्री पंडित राम प्रसाद राम खलावन गावत रहने सुनावत रहने गांव में। आज हम लोग के अवसर है, ऋषि ढोलक पर है, दंताल पे हमारे दुई मुन्ना है और वो है व्यास और सुनील, हम लोग मिल के गए और कृष्ण कामरा लगा दे और हम लोग गा दे। सब कोई आनंद में सुनिए तुलसीदास, स्वामी तुलसीदास, बाबा तुलसीदास के कहानी है।

अपने प्रभु से करे हैं, श्री राम से, बस उसका चेतना जाग गया भैया। तो बोलने आप तुलसीदास बोली

तुलसीदास जी के कहानी यहाँ से हमने श्रवण की है श्री कृष्ण राम खेलावन जी के आवास में और पेश किया गया है देना खमीता राजलित श्रीमती लैनम बाबू राम जी की तरफ से। मेरे प्यारे सुनने वालों, आपको लेकर चलते एक बार फिर देना खलास का फिल्म फोर पार्क से। इस बार है बॉब एंड ऑन द हाउस बद्रेव। इनका मालिक जो है श्रीमान हरिदत्त रोहित देव नारायण जी, इनके तरफ से हम श्रवण करेंगे।

ये सुंदर सा भजन पेश किया गया है दनाखलाइस कफिंग फोर पार्क से बाव एंड अंडरहाउस बद्रेव बाव एंड अंडरहाउस बद्रेव इनका मालिक जो है श्रीमान हरिदत्त देवनारायण हरिदत्त रोहित देवनारायण जी इनकी तरफ से यह सुंदर सा भजन हमने मिलकर और श्रवण की है आपके लिए पेश है दनाख के रहने वाले श्रीमती लिलियन मोतीराम जी की तरफ से

रसिका दीनदयाल जी की आवाज में जय राधा रमन हरि बोल। सुंदरता भजन स्पॉन्सर भजन कार्यक्रम फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के तरफ से आपके लिए पेश किया जाता है और ये सुंदर सा भजन पेश किया गया है देन हाँ के रहने वाले श्रीमती लिलियन मोतीराम जी की तरफ से। शुभ प्रभात कहते हुए हम सभी को एक मंगलमय दिवस भी पेश कर रहे हैं। फाहोन रेडियो के डायरेक्ट स्टाफ पर्सोनल सभी फ्रेवेलर्स के तरफ से तोहफा के रूप में सभी सभी सभी स्पॉन्सर सभी सुनने वालों सभी भक्त प्राणियों के वास्ते

प्रभुधराम होलास के आवाज़ में यहाँ से सुंदर सा भजन पेश किया गया है फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से। फाहन रेडियो के डायरेक्ट स्टाफ पर्सनल सभी फ्राई वेलकर्स के तरफ से दिल से आपको धन्यवाद किया जाता है तोहफा के रूप में। सभी स्पॉन्सर सुनने वालों सभी भक्त प्राणियों के वास्ते पेश किया गया है। आपके सेवा में सेविका शांता जी यहां से प्रोग्राम को पेश की। सभी भक्त प्रिय आत्माओं को भजन प्रोग्राम के सफर में आपको तमाम खुशियां खुशनसीबियां पेश किया जाता है।

जरा फिर से कहना कि तुम राजा की रानी बनोगी। हाँ जरूर से बनोगे। और कहते हैं कि बवार वत फैन इज, बवार वत फैन इज ऑफ लाथेत ऑफ एतनी ख्रोत ऑफ क्लेन इज, बवार वत फैन इज ऑफ एतनी ख्रोत ऑफ क्लेन इज, हाउ फास्ट वत राक्त लात लॉस वत नीत gelukkig maak. Dit gaat u ook heel leuk vinden, een heel leuke gift ook voor u.

तैया तैया तैया रे, और लाल दुपट्टा ले गए उड़ा के हवा ने, हवा के झोंके ने। जरा मुस्कुरा के तो देखो, हाँ जी जरा मुस्कुरा के तो देखो, दुनिया हंसती नजर आएगी। सुबह सुबह शेयर करके देखो, सुबह शेयर करके देखो, सेहत ठीक हो जाएगा। हाँ कर्ज घटा कर देखो, अच्छी नींद आएगी। मेहनत करके दे देखो, हाँ मेहनत करके तो देखो, पैसा की तंगी चली जाएगी।

We hebben een geweldige nummer samen kunnen genieten. Dus de bijbeno. एक छोटी सी कहानी आपको बता दे सुख और दुख के बारे में। ऐसे अचानक एक मोड़ पर सुख और दुख की मुलाकात हो गई। दुख ने सुख से कहा, तुम बहुत भाग्यशाली हो। जो लोग तुम्हें पाने के कोशिश में लगे रहते हैं। तो सुख ने मुस्कुराते हुए कहा, सुनिए जी, भाग्यवान मैं नहीं तुम हो। सुख कहते हैं कि भाग्यवान मैं नहीं तुम हो। दुख बड़े हैरान हो गए, तो दुख ने हैरानी से पूछा, वो कैसे? तो सुख ने बड़ी ईमानदारी से जवाब दिया, जवाब सुनिए जी, वो ऐसा कि तुम्हें पाने कर, तुम्हें पाकर लोग अपनों को याद करते हैं। सुख कहते हैं कि तुम्हें पाकर लोग अपनों को याद करते हैं, लेकिन मुझे पाकर सब अपनों को भूल जाता है। ये एक छोटी सी कहानी सुख और दुख के बारे में।

खूब फरमाए। कुमार शानो जी और अलका याग्निक जी ने आपने सुने। वो लड़का और वो लड़की, हाँ खूब याद आती है और जरूर याद आएगा। मौसम जो हसीन है, चलो ये खूबसूरत गीत यहाँ से हम शामिल करते हैं।

एक बार आपने फिर से सुने कुमार शानू और अलका याग्निक जी की आवाज में प्यार, फिल्म का नाम है प्यार का रोग। हम खुश है ये जानकर कि आप प्रोग्राम सुनते हैं, तो बहुत बहुत मुझे भी हर्ष हो रहे हैं। ये प्रोग्राम जो लाइव एंड डायरेक्ट आप ही के लिए प्रस्तुत किया जाता है, आपको तमाम खुशियाँ और खुशनसीबियाँ पेश किया जाता है आप ही का फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से।

afgestemd op Faun Hindustani Radio, Your Life and Direct. Aapke liye pahunchaya jata hai, aapika kamre tak, aapika kano tak. चलो शामिल करते हैं ये सुंदर सा गीत आपके लिए.

सोनू निगम जी की आवाज़ में हमने सुने सुने वालों सुंदर सा गीत। जैसे जैसे आपका नाम ऊंचा होता है, जैसे जैसे आपका नाम ऊंचा होता है, वैसे वैसे शांत रहना सीखिए, क्योंकि आवाज़ हमेशा सिक्के के करते हैं, आवाज़ हमेशा सिक्के ही करते हैं, सिक्के यानी कि मंद ख्याल, आवाज़ हमेशा सिक्के ही करते हैं, नोटों को कभी बचते नहीं, सुना हमने और नहीं देखा।

श्रिया घोषाल और उदित नारायण जी की आवाज में हमने यहाँ से सुने सुंदर सा गीत। सुने वालों, एक उम्र होती है जब सिर्फ रूप रंग महत्वपूर्ण होता है, और फिर एक उम्र होती है जब विचार महत्वपूर्ण होते हैं, और आगे में सुनने वालों, एक उम्र के बाद सिर्फ सात महत्वपूर्ण होता है। एक उम्र होती है जहां पर रंग और रूप महत्वपूर्ण होता है, और फिर एक उम्र होती है जहां पर विचार महत्वपूर्ण होता है, फिर आगे में एक उम्र आता है ऐसे कि जहाँ पर सिर्फ सात रहने के सात महत्वपूर्ण देता है।

मोहम्मद अजीज अलका यज्ञिक जी और साथ दे रहे थे विनोद राठौड़। ये सब मिलकर हम के सुनाए कभी खुशियों की सरगम लिखेंगे। कहते कि अच्छे कर्म अच्छे काम करते रहो, चाहे कोई सम्मान करे या ना करे, क्योंकि जैसे सूरज उदय तब भी होता है जब करोड़ों लोग सोए रहते हैं। आपको हम यहाँ से साथ लेकर चलते हैं आपके ज़्यादा ना वक्त लेते हुए।

लक्ष्मीकंद और आनंद बख्शी के साथ संगीत पर जो हमने सुने कविता कृष्णमूर्ति जी, अलका याग्निक और मोहम्मद अजीज जी से। अंधेरे में छाया, अंधेरे में साया, यानी कि हचखादियो, अंधेरे में साया और बुढ़ापा में काया हतलेखा, और अंतिम समय में माया हत मतरियल, किसी का साथ नहीं देता। एक बार फिर, अंधेरे में छाया, बुढ़ापा में काया और अंतिम समय में माया किसी का साथ नहीं देता।

उदास ना हो ऐ जिंदगी, उदास ना हो ऐ जिंदगी, हम तो हर हाल में तुमसे खुश रहते हैं। जी हाँ, उदास ना हो ऐ जिंदगी, हम तो हर हाल में तुमसे खुश रहते हैं। कभी धूप अंधेरे में भी, कभी धूप अंधेरे में भी जुगनों की तरह पल भर की रोशनी में जीने के जुनून रखते हैं।

लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, ज़रा सुनिए जी। पहले दिन हंसेंगे, दूसरे दिन मजाक उड़ाएंगे और तीसरे दिन बस भूल जाएंगे। इसलिए, जी हाँ, इसलिए लोगों की परवाह मत करो, करो वो जो उचित है, जो उचित हो, जो तुम चाहते हो, जिसमें तुम खुश हो। याद रखना, जी हाँ, याद रखना कि ये ज़िंदगी हमारी है, लोगों की नहीं।

ना मोहब्बत ना दोस्ती के लिए वक्त रुकता नहीं किसी के लिए। मोहब्बत तो बस एक एहसास है, जिसे हो जाए बस वही खास है। और कहते हैं जिनके मन का भाव सच्चे होते हैं उनके हर काम अच्छे होते हैं।

मर के भी हजारों को याद आएंगे, मर के भी हजारों को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। सुनने वालों की सेवा में विजयंती नाथों का प्यार भरा नमस्कार। आपका जन्मदिन है, आपके घर पर एक नए मेहमान आए हैं, यानी एक बेटा या तो एक बेटी ने जन्म लिया है या तो कोई जश्न आपके घर पर है, तो आप सभी को बधाइयां पेश कर रहे हैं। जो बीमार है या लाचार है तो भगवान से तंदुरुस्ती के लिए प्रार्थना कर रहे हूँ। जिसके घर पर विपत पड़ी है भगवान उन्हें सहन शक्ति प्रदान करे। जो हमारे देश में मेहमान बनकर आए हैं हम आपको हृदय से स्वागत करते हैं, और जो विदेश जाने वाले हैं हम आप सभी को एक शुभ यात्रा पेश कर रहे हैं। जहाँ पर भी आप हैं, जिस हाल में भी आप हैं, आप सभी को भी हम याद करते हैं। और जो लोग इंटरनेट द्वारा हमारे प्रोग्राम को विदेश में सुन रहे हैं आप सभी को भी हम याद करते हैं। सुनने वालों, अब से लेकर दिन में 12 बजे तक मैं आप सभी की सेवा करने वाली हूँ, इसी आशा के साथ कि जिस तरह से मैं अपने हिस्से के प्रोग्राम पेश करूँगी आप लोगों को जरूर पसंद आएगी।

राहुल आए और विजयंती ना आए ये तो हो ही नहीं सकता। अनिल भीम प्रोग्राम में आ रहे हैं सुनने वालों, हे शारदे माँ।

सुंदर सा भजन हमने पेश किए हैं अनिल भीम की आवाज़ में, हे शारदे माँ। सुनने वालों, एक बहुत सुंदर सा गीत हम चुन कर रखे हैं आप सभी के वास्ते, आप सभी सभी सभी सुनने वालों के लिए। बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। मोहम्मद रफ़ी जी के साथ में किशोर डा आपको सुनाने वाले हैं।

अभी आप सुन रहे थे बने चाहे दुश्मन, जमाना हमारा सलामत रहे दोस्ताना हमारा। और अगर आप लोगों की दोस्ती नहीं होती तो मैं यहाँ पर नहीं होते। जब दोस्ती की बात होती है सुनने वालों, तो कुछ और गीत हम चलाने वाले हैं आप सभी के वास्ते। दोस्तों को सलाम, दुश्मनों को सलाम, रॉकी नहीं विजयंती है मेरा नाम।

आप सुन रहे थे दोस्तों को सलाम, दुश्मनों को सलाम, रॉकी नहीं विजयंती है मेरा नाम। एक और गीत हो जाए दोस्ती के रूप में हम पेश करते हैं, और ज़रा सा हम देखें अमित कुमार जी आपको सुनाने वाले हैं साथ में मिथुन जा यानी मिथुन दा के साथ। चलिए मिलकर सुनते हैं।

ने पेश किए हैं। जमाने को रिखाना है फिल्म का नाम, और इसी फिल्म से हम पेश करते हैं दिल लेना खेल है दिलदार का।

मोहब्बत की आग में जल मरने वालों के, मगर अफसोस आज की दुनिया में मजनू फरहा रांझा तो है मगर लैला नहीं, शीरी नहीं, हीर नहीं। लेकिन दोस्तों

लेना खेल है दिलदार का भी आप सुन रहे थे। फ्रॉम द मूवी जमाने को दिखाना है, इसी फिल्म से हमने पेश किए हैं। यम्मा यम्मा फ्रॉम द मूवी शान से हम पेश करते हैं सुनने वालों।

0: अभी आप सुन रहे थे यम्मा यम्मा यम्मा यम्मा, ये खूबसूरत समा कल रात की आज है जिंदगी, कल हम कहाँ तुम कहाँ। ये तो सच है सुनने वालों। तो मैं आप सभी से यही कहना चाहती हूँ कि हर पल आप अपना जिंदगी जियो और हर पल आप अपनी जिंदगी में एंजॉय करो। यार बिना चैन कहाँ रे।
1: Press the bell icon on the YouTube app and...

0: टू एंजॉय।
1: यार बिना चैन कहां रे, अभी आप सुन रहे थे सुनने वालों, फ्रॉम द मूवी साहेब से हमने पेश किए हैं जानू मेरी जान मैं तेरे कुर्बान। फ्रॉम द मूवी शान से हम पेश करते हैं सुनने वालों मोहम्मद रफ़ी जी के साथ में किशोरदा आपको सुनाने वाले हैं, और ये गीत कमांड किए हैं प्रकाश दमरी जी, तो उन्हीं के वास्ते हम ये गीत चलाते हैं।

0: फ्रॉम द मूवी शान से हमने पेश किए हैं जानू मेरी जान मैं तेरे कुर्बान। आपको सुनाने वाले थे मोहम्मद रफी जी, किशोर डा के साथ में आशा भोसले और उषा मंगेशकर जी, और ये गीत हमने पेश किए हैं प्रकाश डमरी जी के वास्ते, कह लूं तुम्हें या चुप रहूं।
1: हाँ,
2: या चुप रहूं
1: ना,
2: दिल में मेरे आज क्या है
1: क्या है।

अभी आप सुन रहे थे प्रेम की रैया है राम के भरोसे, फ्रॉम द मूवी अजब प्रेम की गजब कहानी से हमने पेश की है। सुनने वालों, बड़ी मुश्किल है और खोया क्या है, मेरा दिल है या आपका दिल है, चलिए मिलकर सुनते हैं।

बड़ी मुश्किल है खोया मेरा दिल है, अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी अंजाम से हमने पेश किए हैं और अभिजीत आपको सुनाने वाले थे और म्यूजिक दिए है आनंद मिलन जी। रुक जा ओ दिल दीवाने फ्रॉम द मूवी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, इसी फिल्म से हम पेश करते हैं आप सभी सुनने वालों के वास्ते।

अभी आप सुन रहे थे रुक जा ओ दिल दीवाने। दिल तो पागल है, इसी फिल्म से हम पेश करते हैं कब तक चुप बैठे हैं अब तो कुछ बोलना।

कब तक चुप बैठे हैं, अब तो कुछ बोलना। आपको सुनाने वाले थे लता जी के साथ में उदित नारायण जी। फ्रॉम द मूवी चलते चलते इसी फिल्म से हम पेश करते हैं प्रेम नगरिया की तुम भी डगरिया चलो।

आप सुन रहे थे ओ बेबी डोंट ब्रेक माय हार्ट, और आपको सुनाने वाले थे अभिजीत और कविता कृष्ण मूर्ति जी फ्रॉम द मूवी मोहब्बत से हमने पेश किए हैं। सुनने वाले हो एक बहुत सा सुंदर सॉन्ग हम पेश करने वाले हैं आप सभी के वास्ते, और ख़ास करके ये गीत हम पेश करते हैं शीला ठाकुर जी के लिए जो हमारे समधन भी है। और जबकि आज शीला ठाकुर जी का 60वीं जन्मदिन जो है, तो ढेर सारे बधाइयाँ शुभकामना और खुशियाँ पेश किया जाता है हमारे तरफ से और परिवार इसरी के तरफ से।

0: अभी आप सुन रहे थे जिंदगी है दुआ, और ये गीत हमने पेश किए हैं शीला ठाकुर जी के वास्ते, जिनका आज 60वीं जन्मदिन जो है। तो ढेर सारे बधाइयाँ, शुभकामना और खुशियाँ पेश किया गया है। देखा तेनू पहली बार वे फ्रॉम द मूवी मिस्टर एंड मिसेस माही, और प्रोग्राम में भी भाग ली है शाडा इसरी जी, तो उन्हीं के वास्ते हम ये गीत भी चलाते हैं।
1: इन दोनों की जन्म पत्री एक है और इनके नाम भी एक है, माही।
2: एकदम बैट बॉल जैसी जोड़ी है, मेड फॉर इच अदर।

देखा तैनू पहली पहली बारवे फ्रॉम द मूवी मिस्टर एंड मिसेस माही से हमने पेश किए हैं और ये गीत कुमांग करने वाली थी शादा इसरी जी, तो उन्हीं के वास्ते हमने ये गीत चलाए हैं। बैड न्यूज़ है फिल्म का नाम और इसी फिल्म से हम पेश करते हैं रौला रौला।

अभी आप सुन रहे थे रौला रौला फ्रॉम द मूवी बैड न्यूज, और इसी फिल्म से हमने ये सुंदर सा गीत चलाए हैं आप सभी के वास्ते। इस बार हम पेश करते हैं जलसा, गीत का बोल है जलसा, तो चलिए मिलकर सुनते हैं।

अभी आप सुन रहे थे जलसा, और जलसा के बाद एक और सुंदर गीत न्यू सॉन्ग हम आप सभी के वास्ते चलाने वाले हैं, प्यार बेकरार हुआ।

बेकरार हुआ भी आप सुन रहे थे सुनने वालों। और ज़रा सा हम देखें तो ये गीत हो जाए आप सभी के वास्ते, चल तेरे इश्क में।

सुनने वालों, यहाँ तक आपने सुने हैं हमारे हिस्से का प्रोग्राम जो समाप्त होने पर आया। जिस तरह से हमने अपने हिस्से के प्रोग्राम पेश किए हैं, हमें आशा है कि प्रोग्राम आप लोग को जरूर पसंद आए हुए होंगे। अगर ये जिंदगी बाकी रहा तो हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, हमारी प्यार भरी राम राम नमस्कार, खुदा हाफिज, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।

कर्म कहो किस्मत कहो, कर्म कहो किस्मत कहो चाहे कहो तकदीर, पहले बना प्रभावत पीछे बना शरीर, कर्म के गठनी लाद के जग में फिरे इंसान, जो जैसा करे वैसा ही भरे, विधि का यही विधान, कर्म करे किस्मत बने, कर्म करे किस्मत बने जीवन का यही मरम, प्राण तेरे हाथ में ही प्राणी तेरा अपना ही कर्म। सुनने वालों की सेवा में सादी सी नमस्कार, मेरी आदावच और आदि गुफाहों के प्रोग्राम, आज ये दोपहर के प्रोग्राम, शनिवार का दिन 11 तारीख 11 जुली तो मेरी जो सेसेंट में देखे, और ये कार्यक्रम में आपका सेवक शाम पूरे ना आपकी सेवा करने जा रहा हूँ आपसे, और आपके साथ मिलकर अभी कार्यक्रम सुन रहे थे कुलेखा जो है विजयंती के जरिए से, यही मैं सोच रहा हूँ जिन अंदाज में अपना प्रोग्राम आपके लिए प्रस्तुत किए, जिन विचार से आपको पसंद आया हुआ होगा, तो यहाँ से मैं अपने अंदाज में ये प्रोग्राम आपके लिए प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, ये सोचते हुए कि आपको पसंद आएगा, कुछ गलतियाँ हो जाए माफ़ कर देना हमारे साथियों, इंसान जो हूँ ना, और जैसे आपको मालूम है आज का दिन जैसे आपको बताया शनिवार का दिन है, 7 राख है और 11 तारीख हो चला है, और जो है जुली इतना जल्दबाजी में दिन घड़ी कटते जा रहा है, जहाँ भी आप हो खुशहाल रहो, अपने ख्याल रखना, और आज का दिन जो है शुभ हो, सीख नमोदा दत्त वैस एक, और इस सारे जहाँ में सिस्ती में और जहाँ तक ये राजू सुनाई देता है जो भी सुन रहे हैं, हम उन लोगों के फिर भी स्वागत अपनी तरफ से, और यूँ ही करते हुए हमारे साथियों, और इसमें कुछ टूटियाँ हो जाए मुझसे बोलने में, मेरी जुबान से ऐसा कुछ शब्द निकल जाए जो आपको अच्छा नहीं लगे, तो यूँ ही माफ़ कर देना, और ये जानबूझकर तो मैं गलती नहीं करना चाहता हूँ, फिर भी इंसान हूँ ना, हो ही जाता है, क्या करूँ मैं हमारी दोस्तों, और जहाँ भी आप हो खुशहाल रहो, मैंने आपसे कह चुका फंदाख मोहेदाख वारमदाख नीलांत, और आप जानते हो गेंद हो रहा है, फुटबॉल हो रहा है इन दिनों, उसमें आप हम सब जुड़े हैं, और धीरे धीरे धीरे सुमर आ चुका है, और आप जानते हो खरीद फंदाख फंद मोमेंट इन लाइफ बेस्ट में से लात इन मोमेंट फुर बे खान मानते इन माल फर्स्ट तरीके फर्स्ट तरीके दी कौन नहीं मेरे तरफ है, या सुबह सुविधा सेल्फ भी हमारी प्रिय और साथियों,

0: तो हमारे साथियों, आज के कार्यक्रम में यहाँ कुछ पल आपके साथ मिलकर मैं यहाँ भगवान की वंदना करते चलते हैं दोस्तों, क्योंकि साथ तो क्या जाएगा, वही सुकार्य करते चलिए, किसी के काम आते चलिए। जबकि हम सनातन धर्म के पालन करते हैं तो सनातन धर्म के राह बताता है, जो हम लोग को सिखाता है, तो वही राह पे चलो, किसी के काम आते चलो, यही हमारी सनातन धर्म के महत्व है हमारी साथियों, यही तो है। और हमारे भैया चांद रघुनाथ जी अल्फानंदर ऐसे काफ़ी दिनों के बाद मैंने आज उपस्थित हुआ हूँ, और आज जब शनिवार है तो आप सुनेंगे तो इसे 2 बजे के बाद में श्रीमान राजकुमार रौली मोहन सुनाम से, और जाकर सुनाम से, और समाचार सुनाम के हालात, सुनाम के न्यूज़ जो प्रस्तुत करता है वो शनिवार का दिन, तो आज का दिन जो है शनिवार है, और ना त्वेय तो सत्वेय अंतरिक्ष श्रीमान राजकुमार रौली मोहन। और वैसे तो डॉक्टर शर्मा से भी कांटेक्ट है, डॉक्टर शर्मा से कांटेक्ट है मैं यूं ही, और ये कहता हूँ अगर वो आ जाए तो उससे भी आप कुछ कोई और सुनेंगे राजनीति के क्षेत्र पर, पॉलिटिक के क्षेत्र पर, वहाँ सुनाम के हालात जो है आपके और बतलाएंगे हमारे साथ क्यों, और जैसे जिससे फिर कांटेक्ट हो जाएगा तो कुछ न कुछ बातचीत होता चलेगा धर्म के अनुसार, और राजनीति, और कुछ जो है हालात सुनाम के बारे में, सुनाम के समाचार आप सुनेंगे। तो यहाँ कुछ पल हमारे साथ मिल जाइए और वो गुनगुनाइए, आप ही के काम आएगा। आशीर्वाद।
1: सरोज रज निज

जो ही मैं आपसे कह दूं, और श्री पूज्यपन जो है संजय और रजेश दो भ्राता है, भाई है संजय और रजेश भगवंत, इन दोनों के तरफ से श्री कृष्ण मंदिर ये चलाते हैं जो यान फन हो ये सरात में है हमारे साथियों। तो इन लोगों की तरफ से आज का दिन जो है आपके लिए शुभ हो एंड खातिदून खात्मे ही सैया।

जय बजरंग बली की जय। हमारे साथियों और जाकर हनुमान स्वामी बाबा हर एक कल्याण करे, मनोकामना पूर्ण करे, यही हम आपके लिए भी और प्रार्थना कर रहे हैं साथियों, और यही चाहते हैं कि आप सुखी रहो, खुश रहो और फिर से

मैं आपका सेवक श्याम पूरन भी आपके साथ दे रहा हूँ। हमारी साथियों हवड़े, जैसे आपको मालूम है दिन तारीख और महीना और बीता जा रहा है ना आने वाले दिन में, जैसे आपको मालूम है मिलन है सऊदी पार्क में और वहाँ उसमें भाग ले सकते हैं।

अतः चलो तुवे दो और तीन के दरमियान श्रीमान राजकुमार रौली मोहन सिंह नाम से, और अभी कोशिश से मैं कर रहा हूँ श्रीमान जो है देव शर्मा जो है उनसे भैया से कॉन्टेक्ट करने के लिए कुछ बातचीत होगा। क्या बातचीत? राजनीति के और जो है क्षेत्र पर पॉलिटिक्स नाम के। उसके बारे में कुछ सुनेंगे हम फिर भी।

0: यहाँ पे ही किस स्टेशन फाहुन है हमारे साथियों,
1: बोलो जय जय
0: पूरे आखिर में हिंदू अंदर रूप अमरूप नहीं दलन
1: प्रभु
0: मुझे मेदा है। दोपहर के प्रोग्राम शनिवार के शाम है, दोपहर है दोस्त।

कलाकारों की कमाल आप सुन रहे हो। दाख सॉन्ग है

अब इसीलिए इसीलिए मैं आपसे ये जरा से कह दूं ना, यादों की हवा जख्मों की दवा बन गई, यादों की हवा जख्मों की दवा बन गई, दूरी तुम्हारी मेरी चाहत की सजा बन गई, कैसे भुलाऊं मैं तुम्हें एक पल के लिए, तुम्हारी यादें भी हाँ तुम्हारे यादें ही मेरे जीने की वजह जो जाकर बन गई है। साथियों यूँ ही सुनते रहना पावन के कार्यक्रम।

तो साथियों यही तो होता है ना, प्यार करो तो यही मिलता है। ये पल भी ऐसा कि भुलाया ना जाए, याद तेरी आए पर किसको बताए ना जाए। प्यार तुझसे इतना कि तेरे सामने रोया ना जाए, पर दर्द इतना कि हंसा भी ना जाए। हाँ, और आगे में चलकर फिर भी दिल कहे तुझे भुलाया न जाए।

एक से एक और एक से बढ़कर एक कलाकार जो होते हैं ना। और यही इसीलिए कहते हैं, थोड़ी हिम्मत रख, अपनी बात रख, जब कोई ना सामने तो ऊंचे अपनी आवाज रख। ये खुद गर्ज है, ये खुद गर्ज की दुनिया है, सबको सबको बस अपनी पड़ी है ना। तेरा कोई नहीं, कोई नहीं रखेगा, तू खुद अपना ख्याल रख। साथियों, फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो है जहाँ पे आप ट्यून हैं और कार्यक्रम में

आपसे बताता चलूं है साथियों, दो और तीन के दरमियान श्रीमान राजकुमार रोली मोहन सुनाम से और प्रोग्राम जब प्रस्तुत करता है सुनाम के हालात, सुनाम के इन्फॉर्मेशन, ताज़ा खबरें आपके लिए प्रस्तुत करता है। यूं ही मैं आपको याद दिलाता हूं कि आपकी शनिवार का दिन है। अभी भैया जो है देव से कॉन्टेक्ट नहीं हुआ है, देव जो है शर्मान

0: उस्तादों के उस्ताद ने
1: बंधु लगे रे पिया तोरा
0: साथियों
1: काजर के दर्द मिलेगे।
0: थैंक यू वेरी फॉर योर अटेंशन। और यह कार्यक्रम आपके लिए लाइव जो प्रस्तुत किया जा रहा है आज के दिन शनिवार का दोपहर के प्रोग्राम है। हेलो प्रमा दिन कैसे हो।

उस्तादों के उस्ताद ने भाई, क्या बात है, कलाकार की तारीफ करना ही चाहिए अगर वो काबिल है तुमने। फिर भी कोशिश तो सब करते हैं, हर कलाकार अपने अपने तरह से अपनी अपनी जगह

तो हमारे साथियों और प्रोग्राम में ये खास जो आप श्रवण किए, जो ही मैं देख रहा हूँ घर की तरफ जो है कि जाकर 4 मिनट बाकी है और जबकि 1 बजने में तुवेई और द्री के दरमियान श्रीमान राजकुमार रौली मोहन समाचार लेकर आपके लिए उपस्थित रहेगा। फिर भी यहाँ जो वक्त हो गया, समय हो गया है, यहाँ से आप सुनेंगे कॉमर्शियल्स यानी कि वीक ज्ञापन हमारी मित्रों, हमारे दोस्तों, हमारे साथियों, जहाँ भी आप हो खुशहाल रहो ना। और जो है इस वक्त जो है 12:55 तक देखती हूँ, 12:55 तक क्या वही पल है, घड़ी है जबकि, और यहाँ पर ये आपको और सुनने

या हमारी और दोस्तों और कार्यक्रम चलते है, चलता है रेडियो फाउंड की, और कहाँ चलता है दोस्तों, फिर भी आपके साथ मिलकर रेडियो सुन रहे हैं, और यहाँ जो भाई बैठ के आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं, लोग जो साथ दे रहे हैं, एक दो लोग ज़रूर मुझको फ़ोन करके बात किए हैं, और मैं उन लोगों को अपने तरफ से हृदय से धन्यवाद दे रहा हूँ। पूछते थे कहाँ चला गया था, यूँ ही जिंदगी इसी तरह से है, आज हम है कल नहीं है, और वो कल वो घड़ी जब हम है तो यहाँ गुरूर घमन कभी नहीं करना दोस्तों, वो साथ नहीं जाएगा। कोशिश करो वो कार्य करने के लिए जो आपके काम आ सके, और यहाँ तो हम है क्या लेकर साथ जाएंगे, आप जानते हो वही सुकार्य अब जब करेंगे तो वही साथ जाएगा। तेरी आज भी कमाल करती है, कैसे कैसे दिल से सवाल करती है, एक पल भी तन्हा होने नहीं देती, तेरी याद भी मेरा कितना हमारी साथ क्यों कितना ख्याल जो करती है।

इसीलिए जरा से मैं आपसे कह दूं कि कोई शाम आती है तेरी याद लेकर, कोई शाम जाती है तेरी याद देकर। मुझे तो इंतजार है उस शाम का जो आए तुझे अपने साथ लेकर, भैया देवेंद्र सिंह शिवनाथ।

या किसी को दिल से चाहना बुरा तो नहीं, किसी को दिल में बसाना बुरा तो नहीं। गुना होगा जमाने की नजर में तो क्या हुआ, हाँ गुना होगा जमाने के लिए तो क्या हुआ। जमाने वाले भी इंसान है, ये खुदा तो नहीं है हमारे साथियों। यूं ही

पत्थर की है दुनिया, जज्बात नहीं समझती, दिल में क्या है ये बात नहीं समझती, तन्हा वो चांद भी है सितारों के बीच, तन्हा वो चांद भी है सितारों के बीच, लेकिन चांद का दर्द बेवफा रात जो है नहीं समझती ना।

साथियों, अभी मैं आपका सेवक श्याम पूरन हूँ। कुछ संगीत था आप ही के नाम, इस घड़ी में

ja. ख्वाबों के दुनिया में हम खोते गए, होश में थे फिर भी मदहोश होते गए ना। जाने क्या जादू था उस अजनबी चेहरे में, जाने क्या जादू था उस अजनबी चेहरे में, खुद को बहुत रोका फिर भी उसी के और जाकर आखिरी में होते गए।

अब इसी दरमियान आपसे कहता चलूं कि जो है सपना सपना ख्वाब जो होते हैं, जिंदगी ने पूछा सपना क्या होता है तो हकीकत बोली, बंद आंखों में जो अपना होता है, खुली आंखों में वही जो है सपना होता है। जगदीश सिंह जी,

दोस्तों यही आपसे बतला दूं कि मोहब्बत जो है क्या है, क्या है और क्या चीज है ना, समझो तो एहसास, देखो तो रिश्ता, कहो तो लफ्ज, चाहो तो जिंदगी, करो तो इबादत, निभाओ तो वादा और मिल जाए तो यही, इसी को जन्नत जो जाकर कह देते हैं लोग ने हमारे साथियों। और फाहुन रूप आप चुने, अभी मैं आपका सेवक श्याम पूरन हूँ आपके साथ जो दे रहा हूँ, और यही सोचते हुए कि आप मेरा प्रोग्राम आपको पसंद आता हुआ होगा ना।

हमारे साथियों और घड़ी की तरफ देख रहे हो, फिर ऊपर हल्फ तुवे हो चला है 2 बजे के दरमियान जो है, जैसे तुवे और द्री के बीच में जो जाकर हमारे भैया रौली राजकुमार मोहन सुनाम से और समाचार आपके लिए प्रस्तुत करेंगे। सुनाम के हाल आपके बारे में बताएंगे और आप जरूर से आज के दिन जो है इस पल घड़ी इंतज़ार करते। चलो अभी कुछ घर के अंदर में

0: या बेस्ट ओरे साथियों,
1: कुछ न करे
0: ये दोपहर के प्रोग्राम आप सुने हैं। शनिवार के है 11 तारीख। अभी आप सुने हैं भैया लक्ष्मण और हेमंत को संदेश दिया, और आने वाले दिनों में जो मिलन फेस्टिवल होने जा रहा है उनके बारे में। और यहाँ तो हमारे भैया रवीन बलदेव सिंह बता रहे हैं, बोलो सन्नामी ना।

तो हमारे साथियों, शनिवार का दिन है 11 जुलाई 2026 दिन मिनट ऊपर और तुवे हो चला है। वादा के मुताबिक शनिवार के दिन अति सात रख सुवेद एल के सात रख मेदाख हबुब दान फन चुनाम दे रोली मोहन पारवे के से सुफुर खुमे दा दूर तू दूं फा उमस्ता ने खेगी दे दत नीत दूर इस खान onze excuses ervoor, onze sorry eigenlijk moet ik zeggen mensen, vragen waar is meneer Rolly? Meneer Rolly is er beste mensen, en als ik die tarie is gewacht is wel, vierstester man Rolly Mohan, die hij, jaakar op een programma prestuut kregen, zijn naam zijn informatie aapko dega, en jaakar politiek, raadneti ke chetr per, en zijn naam ke halaat ke baare mein, jo एक दो सप्ताह और बीते हुए जो है बीत गया, उसमें भाग नहीं लिया, मैं भी नहीं था दोस्तों किसी खास वजह से। तो यहाँ से आज के प्रोग्राम में और अभी यूं ही एक दो सेकंड, क्योंकि एक नियमित अपवासित बीत हर हाल एक दिन प्रोग्राम एल के केयर हमारी साथियों। तो आज का दिन, ये घड़ी, ये पल जो है जाकर, और हम यहाँ से फिर से श्रीमान अभी कुछ घर के अंदर में श्रीमान रोली मोहन और जो आपसे और बात करेगा हमारी प्रिय और दोस्तों।

साथियों, प्रति और शनिवार को वीकलेक्स एक बार शनिवार को शाम को 2 और 3 के दरमियान श्रीमान राजकुमार रौली मोहन जो है ये आपके लिए समाचार प्रस्तुत करते हैं। अभी यूं ही मैं आपसे उन्हें कह दिया, खास करके उनको एक शुभ शुभ वीकेंड और फाहुन रात्रि पे आप चुने। घड़ी की तरफ मैं देखूं तो इस वक्त जो है 3 बज चुका है और मतलब यही है हमारे साथियों, एक छोटा सा ब्रेक, कॉमर्शियल ब्रेक, और आगे के प्रोग्राम ज़रूर आप सुनते हैं।

या बेस्ट और साथियों और कलाकार ने, कलाकार कौन है और साहेब मोहम्मद शरीफ इसाक।

हाँ साथियों और मोहम्मद शरीफ इसाक के आवाज़ में आप सुने तो यहाँ ये शाम है दोस्तों और दोपहर के प्रोग्राम ये सुन रहे हो आप।

आवाज के बारे में आपको क्या कहना है? यही तो है फाहुन, हमारे साथियों।

इस पल में मैं आपसे क्या कहूँ, वो रूठ गए मेरे अंदाज देखकर, वो रूठ गए मेरे अंदाज जो जाकर देखकर बदल गए, मेरे जज्बात देखकर हजारों टुकड़े किए उन्होंने मेरे दिल की, और खुद ही रो पड़े हर टुकड़े, हर टुकड़े पे अपना ही नाम देखकर। दोस्तों,

बहुत उदास है कोई तेरे चुप हो जाने से, हो सके तो बात कर, हाँ हो सके तो बात कर किसी बहाने से। तू लाख खफा ही सही मगर इतना तो देख, कोई टूट गया है तो कोई टूट गया है, तेरे रूठ जाने से ना।

ये वक्त सबके चेहरे याद रखता है। आज किसी का वक्त बुरा है तो उस पर हंसो मत, ये वक्त सबके चेहरे याद रखता है।

इसीलिए तो कहता हूँ कि सूरज से कहो रोशनी देना छोड़ दे, सितारे से कहो टिमटिमाना छोड़ दे, अगर तुम नहीं आ सकते तो अपनी यादों से कहो हमें सताना छोड़ दे। साथियों, ये फाहुन के प्रोग्राम जो आप सुन रहे हो, ख्याल जब उन्हें मेरा आया होगा, मेरी याद ने उनको सताया होगा, भूल न पाए जिन्हें हम आज तक, हाँ भूल न पाए जिन्हें हम आज तक, कैसे उन्होंने हमें भुलाया होगा।

के दुनिया में हम खोते गए, होश में थे फिर भी मदहोश होते गए। जाने क्या जादू था उस अजनबी चेहरे में, खुद को बहुत रोका फिर भी उसी की होते गए।

वाह रे वाह, बदले बदले से लगते हो। हाँ हाँ, बदले बदले से लगते हो, क्या बात हो गई? शिकायत मुझसे है या किसी और से मुलाकात हो गई? हाँ।

कलाकार तो अपनी अपनी जगह होते ना, आप ही से कहता हूँ कि तुझको अपनी रूह में उतार लूँ मैं, खुद को तेरी चाहत में सवार लूँ मैं। नहीं चाहिए मुझे इस दुनिया में और सा कुछ और चीज, बस एक तू मिल जाए, एक तू मिल जाए तो अपनी जिंदगी गुजार लूँ मैं साथी।

0: साथियों, नसीब के खेल भी अजीब होते हैं ना। सच्चे दिल वालों को आंसू ही नसीब होते हैं। कौन चाहता है अपनों से दूर होना, पर अक्सर छूट जाना है, छूट जाते हैं। और जो करीब होते हैं हमारे प्रिय और दोस्तों, हमारे मित्रों, फाहुन
1: ये बता दे तुझे
0: हिंदुस्तानी रेडियो पे जहाँ पर आप चून हो, परमाश्री मोहम्मद रफी साहेब, शमशाद बेगम, इन दोनों की आवाजों में यू ही कहता हूं मैं, ऑन स्टार फलक है।

यूं ही कह दूं आपसे कि हंसते दिलों में गम भी है नबी जी, मुस्कुराती आंखें कभी नम भी है। दुआ करते हैं आपकी खुशी कभी ना रुके, क्योंकि आपकी हंसी के दीवाने हम भी है। यूं ही और इशारे वो इशारों में कह देते हैं

फाहुन आपके साथ कभी नहीं छोड़ता है। दिल रोया पर आंखों को रोने न दिया, सारी सारी रात जागे खुद को सोने न दिया, इतना करता है याद आपको, इतना करते हैं याद आपको, पर इस बात का एहसास आपको होने न दिया। यूं ही आपसे कहता हूं और आपको याद दिलाते हुए ये सुना दूं

कुछ उलझा सवालों से डरता है दिल, ना जाने क्यों तन्हाई में बिखरता है दिल। किसी को पाना कोई बड़ी बात नहीं होता है, पर किसी को खोने से डरता है दिल। यूं क्यों ये बात है, क्योंकि अकेले तो आए, अकेले जाने, अकेले जीना है, क्यों डरता है।

को गाली देने की हिम्मत आती है भाई।

0: luistert naar Hindustani Radio.
1: Radio Faro.
2: Digitaal radio. Internet faro.nl.
3: तो हमारे साथियों जैसे मैंने आपसे बताया खास करके प्रोग्राम आप जो सुन रहे हो इसमें संगीत जो पेश कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ किसी से जरा से बात हो जाए काफी दिनों के बाद। भैया कांति कुमार
4: बोलो भैया,
3: कैसे आप हो? ठीक है ना, बहुत दिन बाद आपसे फिर मुलाकात भेंट भइल। आज इस पल जो है एक मैंने हार्दिक बधाई कि आपसे कुछ बातचीत हो रहा है। और जो है अब इन दिनों इंटरनेट के जरिए से रेडियो सुन सकते हो आप ओवरऑल और सुनते हो डंकवेल दत्तू को बैठे आप, और कुछ बताओ आप हम सुनी। हाँ हाँ इंटरनेट पे खोजिए तू तो पाइए इंटरनेट पे फाउन एफ एम पे इंटरनल हाँ तो ऊपर मिली छ
4: हम खोजो है लाभ दे
3: और आप तार के लिए बहुत आपको डंकवेल हृदय से धन्यवाद तहदिल से शुक्रिया भैया। और कांति कुमार जी न लंग तेत हो रही किस्त मन
4: जाने आप तू तो बोल रहे थे बोला किन किन टेलीफोन टेलीफोन के लिए भी इंटरनेट
3: बोल रहे या या या या या या या या या Vier, dank u wel. Ik wens u een gezegende mooie dag. Het is bij je kant, kom maar. Atja, alsjeblieft, atja. Ja, goed, gaat u goed. Je taal maar bij je kant, kom maar. Die hebben we zaten, en kutspel, onze baat, dit hoe.

जो भी कहो पैगाम ने प्रोग्राम फाहुन की मैं आपके साथ शाम पूरन आपके साथ जो दे रहा हूं सोचते हुए प्रोग्राम आपको पसंद आ

बादशाहों के बादशाह सातों सुरों के बादशाह परमाश मोहम्मद रफ़ी के आवाज़ में ये नंबर को आप सुनें। जबकि मुझे बेहद खुशी हुआ और मैंने और एहसास हुआ कि पता चला कि हमारी अजनबी जी प्रोग्राम सुन रहे हैं, तो मेरे तरफ से आपको और यूँ ही अजनबी जी एक सही हिंद मोईदा कहते हैं आपके साथ भी देने के लिए, हौसला देने के लिए तहे दिल से शुक्रिया कहता हूँ। अजनबी जी अगर वक्त मिले समय मिले तो अगर आकर आप एक दो शेर शायरी शेर कह देते, लोगों की जो है आपकी फैंस जो है हमेशा वो इंतज़ार भी करते।

जिंदगी को तन्हा वीराने में रहने दो, या ये वफा की बातें ख्यालों में रहने दो, हकीकत में आजमाने से

बूंद ही लिए हो तो चलना ही पड़ेगा ना, प्यार मोहब्बत में यही तो होता है, इश्क जो हो जाता है तो क्या मैं कहूँ भैया। सिंपल जी भी प्रोग्राम सुने भाई, सिंपल आपको और हृदय से धन्यवाद। आंसू आ जाता है रोने से पहले, प्यार मोहब्बत करो ना, आंसू आ जाता है रोने से पहले, ख्वाब टूट जाता है सोने से पहले। लोग कहते हैं लोग कहते हैं, आजमाए आप नहीं, लोग कहते हैं मोहब्बत गुनाह है। ये कैसे हो सकता है दोस्तों, काश कोई रोक लेता इस होने से।

पहले। हाँ, अगर कोई रोक लेता इसे होने से पहले हमारे साथियों, तो मोहब्बत दुनिया से कहाँ होता था, दुनिया कहाँ से कहाँ चला जाता। फिर भी यही तो, इसीलिए तो मोहब्बत होता है, प्यार होता है, इश्क होता है, और ये प्रकृति के मूल नतीम के नतीर के ये परम और मूल नतीर के कार्य है। अपना कार्य मूल नतीर तो करता है, वैसे नित्य वही मैं ऐसे सही नित्य अफवाह से डाती है व्यस्त हमारी साथियों दोस्तों, और जो है ये प्रकृति अपना वो नेम है ना, और परंपरा त्रादित्सिक रहो त्रादित्सिक रहो, जो करना है वो तो होता ही रहेगा, और जो आप सीखे हो शुरुआत से जब से पैदा हुआ माँ पिता जहाँ से प्रथम ये कहते हैं प्रथम गुरु वो माँ पिता वो माँ होता है ना, फिर भी जाकर जो सीखते जिंदगी में काम बेलाओ, और ये कभी कभी सुनते रहना

और यहाँ पर प्यार जो है, शब्दों में कहता हूँ कि प्यार तुझसे है बे इंतहा, एक पल के लिए भी तुझसे नहीं खोना है। हाँ, एक पल के लिए भी तुझे नहीं खोना है, इतना जरूरी तो मेरे लिए जीना भी नहीं जितना जरूरी है सिर्फ तेरा होना है। ये शब्दों में ये एहसास दिलाना है, आपको बतलाना है कि प्यार है, कितना प्यार है, लेकिन जब तक एहसास नहीं तो प्यार नहीं है।

आप जो हौसला देते हो हृदय से धन्यवाद तार करने के लिए भी। आज के प्रोग्राम में हमारे भैया सिंपल भी एक साथ दे रहे हैं। नाम उनकी अजीब है ना, फिर भी नाम ही क्या रखा है हमारे साथियों। और प्यार मोहब्बत जो होते हैं उसमें कहता रहता हूँ तेरा चेहरा आज भी मासूम है, आज भी हाँ मेरे चाहत में वही सुकून है। तेरे चेहरे पे एक मुस्कान के लिए जान भी वार दे, ऐसा मेरे प्यार का जुनून है। हमारे दोस्तों यही है फाहुन की पहचान। आप हैं कि हिट सेशन द म्यूजिक सेशन, और अभी मैं आपका सेवक श्याम पूरन आपके साथ जो दे रहा हूँ

कहते हैं लोग समय वक्त बदलता है, नहीं, उसी तरह से दिन रात, उसी तरह से और सूरज चांद तहे साथियों, और जैसे सूरज उन दिनों निकलता था आज भी निकलता है, उसी तरह से उनकी जो है और जाकर ढलते हैं ना। तो प्यार के बाद जब होता है तो ये सदियों से जब से सृष्टि बना है, प्यार नहीं होता तो सृष्टि में आज इंसान भी कहाँ होते, सब कुछ वस्तु जो है। और आज का दिन जो है चला गया है आज तरक्की लेते करते करते, जहाँ व्हाट्सएप इंटरनेट, आप जानते हो क्या मैं आज के बारे में कुछ कहूँ आपको, तो यूं ही आपसे कहता हूँ बस एक बार, व्हाट्सएप के भैया सिंपल प्रोग्राम सुनते भैया नारायण डंक व्याल हर एक कोई जो हौसला देते हैं, फोन करते हैं, ये लाइव आपके लिए कार्यक्रम प्रस्तुत हो रहा है साथियों, बस एक बार करके एतबार लिख दो व्हाट्सएप पे ना, बस एक बार करके एतबार लिख दो, कितना है मुझसे प्यार लिख दो ना, कत्ती नहीं अब ये जिंदगी बिन तेरे, और कितना करूं इंतजार ये व्हाट्सएप पे और बयान कर दो प्यार।

और जबकि एहसास के बात होते हैं ना, तो ना जाने ये कैसी मोहब्बत है तुझसे, बात नहीं होती फिर भी दिल को फिकर बस तेरी है, यही तो कहते हैं। प्रणाम श्री मोहम्मद रफी साहब, सुमन कल्याणपुर, मधुर संगीत।

कलाकारों का तारीफ करते रहते हैं दोस्तों और कहते हैं, यही एहसास दिलाने के शब्दों है ना, कि मेरी किस्मत में ना सही पर मेरे इस दिल में तो हमेशा तुम ही रहोगे। ये लोग भी कहते हैं एहसास दिलाने को, शब्दों तो शब्द होते हैं ना।

तो कहते हैं याद उसे करो जो अच्छा हो, प्यार उसे करो जो सच्चा हो, साथ उसका दो जो इरादे का पक्का हो, और दिल उसको दो जो सूरत से नहीं दिल से अच्छा हो।

कांधे से हटा लो सर अपना, ये प्यार मोहब्बत रहने दो। कांधे से हटा लो सर अपना, ये प्यार मोहब्बत रहने दो। कश्ती

या हमारे साथियों, हमारे मित्रों, हमारे दोस्तों, और अर्ज क्या है? अर्ज जो है कि तुम मेरी चाहत हो, कोई तुम्हें चाहे क्यों? कि तुम मेरी सोच हो, कोई तुम्हें सोचे क्यों? कि तुम मेरी आईना हो, कोई तुम्हें देखे क्यों? कि तुम मेरी दुआ हो, कोई तुम्हें मांगे क्यों? और यही अर्ज है मेरा कि

यार मोहब्बत लव इश्क ये सब क्या से क्या न करवा देते हैं ना। ये जो है प्यार और भरोसा कभी मत खोना, प्यार और भरोसा कभी मत खोना। प्यार हर किसी से नहीं होता और भरोसा हर किसी पर नहीं हो सकता। दोस्तों इस पे आप जो है क्या कहना है, कुछ कहना है? तारक नंबर 0 7 3 2 6 20 7 7 और

हुस्न खूबसूरती इसे अंजाम यही होता है ना। और आप ही से कहते हैं, देखो जाकर आईने में जरा से।

कलाकार अपने अपने जगह हर एक को यो है, हर कलाकार के तारीफ कहाँ तक करे और किन शब्दों में करे। दादा हेमंत कुमार की आवाज आप श्रवण किए। नसीब में जिंदगी भर तुम्हारा साथ हो या ना हो, मगर एक बात हमेशा याद रखना, इस दिल में हमेशा सिर्फ तुम, हाँ तुम, हाँ यकीन मानो तुम रहोगे।

हाँ साथियों, कुमार सानू, प्रभाश्री कुमार सानू, साधना सरगम डुएट सॉन्ग है स्पेशल आप ही के नाम।

तो यूं ही आपसे बता दूं, ये बात जो है इस वक्त ये पल ये घड़ी जो है तेरा पता नहीं, पर मेरा दिल कभी तैयार नहीं होगा मुझे तेरे अलावा, मुझे तेरा अलावा कभी किसी और से प्यार नहीं होगा। शब्दों है ना, एहसास दिलाना होगा कि एक तू ही है जो दिल में समा गया है, वरना कोशिश तो हजारों ने की। फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो के प्रोग्राम आप ही के नाम हमारे साथियों हमारे कार्यक्रम नल सोफ्रेंटिक आप ही की हिट स्टेशन द म्यूजिक स्टेशन फाहुन रेडियो पे आप जो चुन हो उसे

लाल जी बर गोविंद सिंह गया के निवासी बाल गोविंद सिंह की आवाज

सभी साथियों, ये तो है नगमा, आप सुन रहे हो ये प्रोग्राम है, ये कार्यक्रम में, फिर भी एक नंबर मैं आपको यहाँ सुनाने वाला हूँ। काफी दिनों के उन दिनों के बाद जो कहता हूँ नेहा सिंह सेस्टेक के, तो दत्त बस यूनिक अति यूनिक में से और एक व्यक्ति, ये कलाकार जो है मारियो के हरी के नाम से वाकिफ याकिफ थे ये हमारे भैया, और एक नंबर गुलामी के जंजीर लाइफ रिकॉर्डिंग ये प्रोग्राम जो है मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। मार्गो मूर्ख के हरि के जो दांते संगीत में जो भाग लेते हैं कलाकार जो है तो जानते होंगे जरूर, और जो है श्रीमान जो है गुप्तार मार्गो मूर्ख के हरि ना, उनकी कमाल चल के सुनते हैं।

0: तुला पे चढ़ना था। आजादी के बलवेदी पर जब प्राणों का भेद चढ़ाना है, श्री सुभाष जी का गौरव से भरी अमर कहानी है। अरे गुलामी का जंजीर सुभाष तोड़ डाला रे, गुलामी का जंजीर सुभाष तोड़वा डाला रे।
1: यहाँ भारत की आजादी की बात हो रहा है। अभी सुनाम आजाद नहीं हुआ था जब ये

बना पेशावर और पठान बन जाता है। कुटुंब कबीला सब परिवार भारत माँ से नाता है। काबुल में अंजल खाता भक्त राम भी पाता है। रहमत खा

0: तराकी मार्ग बुरके हरी भैया गुप्तार इतिहास रचा है ना
1: बारह दिन उस गंदी शराब में रह करके सुभाष जब कष्ट उठाता रहा पुलिस मंडल आकर के उनको दिन रात सताते रहा उत्तम चंद के गए मकान पर हाल उनको समझाते रहे ताले में दुख बंद पाते लेकिन पासपोर्ट बनवाता रहा यूरोप जाना ठहराते हैं और रह करके कष्ट उठाते हैं गुलामी के जंजीर सुभाष तो रजा रे गुलामी के जंजीर

लगा। 18 मार्च को पासपोर्ट लेकर के कूच ठहराने लगा। 20 मार्च को गया रूस, 28 को जर्मन जाने लगे और हिटलर से सब हाल सुनाने लगा। हिटलर भी प्रेम दिखाने लगा। आजादी फौजी वहां शिक्षा पाने लगे और पासपोर्ट दिखलाने लगे। गुलामी का दंड सभा से

रावण में पहले पहल बनाई थी, द्रेसदन नामक नगर वहां सेना टिकवाई थी, नेता के पदवी पाई, क्रांति की आग लगाई थी। हिटलर जब अपने नखरा दल एक लाइन में कर तैयार किया, कहे सुभाष सुन, 8 करोड़ का मैंने सर पर भार लिया। पर सुभाष ने कहा कि 40 करोड़ का आजाद करना हम धार लिए, और कामदेव को मार लिए, और वश के संसार लिए, गुलामी का जंजीर सुभाष पर।

भारत की इतिहास के और जो देखा जाए तो भारत की और जंजीर टूटा जबकि देश जाकर स्वतंत्र हुआ उसी के बारे में, और ये जो हमारे भाई महान कलाकार गुलामी के जंजीर मार्ग मेर के हरि के नाम से जानते हैं ये कलाकार जो है आपको सुनाए, और ये इतिहास जो है गुलामी की जंजीर टूटने के बाद फोर द ऑन फंक नाम और ये गाया गया उन दिनों मुमकिन ऐसे नहीं था बहुत, और लोग जो अपना रिकॉर्डिंग किए हैं सुनना में तो खुशी की बात है, और आज इंटरनेट में रख दिया तो हम सब मिल के सुने ये मार्ग मेर के हरि की आवाज़। नाम तो आप सुने होंगे ज़रूर लेकिन आवाज उनकी आज मैं आपको सुना है ना। आप एक फाहुन के माध्यम से यही सुंदर सुंदर सुंदर पोपो फ्रॉम त्रिदत्त एंड टोबैगो साथियों रात के निवासी है, जहां जहां हमारी भारतीय लोग आए संस्कृति सभ्यता अपनी भाषा कोशिश की है, तो आज सब जिंदा है ना, खुशी की बात है।

ये महान कलाकार मुकेश जी ने दर्द भरी नगमे, प्यार भरी नगमे, रुलाता हंसाता सब। ना भैया, चार रघुनाथ जी,

आप साथ मिलकर जी रहे हैं। सिर्फ दुनिया में अकेले आए हैं, अकेले जाना है, है? न साथियों, यह हकीकत है, सही बात है भैया चार रघुनाथ, अकेल है। और यूं ही जो आप करेंगे वही मिलेगा, किसी ने कुछ भी आपके लिए नहीं कर पाएगा। अच्छा गलत ज्ञान बुद्धि आपको है, हम सबके है, जो आप करेंगे मिलेगा। अकेले रहने के भी अपना ही अंदाज है ना, ना किसी के आने की खुशी और ना किसी के जाने का गम, यही मैं कहता हूं। और मुकेश जी आपको क्या सुनाना चाहते हैं इसी दरमियान?

भैया दिलीप बताओ ये मौसम और ऐसा संगीत दिलीप रमादीन जरा से मैं आपसे ये कहना भी चाहता हूं कि वक्त और रिश्तों की कीमत तब समझ आता है, वक्त और रिश्तों की कीमत तब समझ आता है जब दोनों हमारी साथियों जब दोनों हो जाते हैं ना,

mevrouw Lita Sourdin. Mala Jaipal, ik dem Surinaamse.

0: सिंगार।
1: ये किस्मत के बात है, तकदीर में जो लिखा हुआ होता है वही तो मिलेगा उसे। जस्ती नकम हमारे साथियों, वो रूठ गए मेरा अंदाज देखकर, वो रूठ गए मेरा अंदाज देखकर, बदल गए मेरी जज्बात देखकर, हजारों टुकड़े किए उन्होंने मेरे दिल की, और खुद ही रो पड़े, खुद ही रो पड़े हर टुकड़े पे अपना ही नाम देखकर। हमारी प्रिय साथियों, मित्रों, दोस्तों, जहां भी आप हो खुशहाल रहो और चूल रहना इसी रेडियो पर, फाहून हिंदुस्तानी रेडियो, तारक मरमुल तक लाइफ आपके लिए प्रस्तुत किया जाता है। अभी तो मैं आपका सेवक श्याम पूरन हूँ, और जैसे जैसे प्रोग्राम रहता है हमारे साथियों सुनते ही रहना जरूर से, और ये फाहून हिंदुस्तानी रेडियो पे आप जो जाकर चून हो तो यूं ही और बताता चलो आपसे ना।
2: दिस इज फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।
3: एडवोकेटन कांतोर आनंद राम सूद वकालत का काम करता है। जब भी आपको एक बढ़िया वकील की जरूरी पड़ गया है,
4: ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde, algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht, personen- en familierecht zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning, jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
3: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delft, laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22.

और ये बताता भी चलूं आपसे कि हम तो हंसते हैं दूसरों को हंसाने के लिए, वरना जख्म इतने है कि ठीक से रोया भी यह नहीं जाता।

यकीन मानो जो संस्कार आपको दिए हैं और पिता मिला है जो आपको, और उसी तरह से समाज में आप बर्ताव करेंगे, उसी तरह से जिएंगे। तो जानते रहना अपने बाल बच्चों को, अपने परिवार से साथ वही बर्ताव करो जो आप चाहते हो, जैसे आपके बर्ताव हो ना हमारे साथियों। ये जो है ये आप इसे मानते हो, जानते हो, यकीन करते हो, आलोचना मत करना करो। और जो है ये जो बात मैं आपसे कह रहा हूँ, यकीन मानो

संतुष्ट हूँ, प्रेरणा मेरा यही है। और आपको निर्देश देता हूँ मैं, मेरा विनम्र निवेदन भी आपसे,

के बारे में जो है आप कल्पना नहीं कर सकते। मेरा मनोरथ जो जाकर यही है, उत्सव जो हम मना रहे हैं इन दिनों, और जाकर आप जानते रहना कि हौसला और बढ़ाना है हमारे साथियों, खुशी संतुष्ट प्रेरणा जो मैं कहता हूँ, ये अनुभव विमुचित आन फूल, यही जो मैं आपसे कहता हूँ, एक दिस बार फोर बेल जैसे मैं आपसे कह दूँ कि उदाहरण है ना। हार्दिक से शुभकामनाएं आपको, और कोई तुलना नहीं करते हैं, गुंजाइश भी नहीं है इसमें। और जाने कि जय सोच रहा हूं मैं कि जो है इस वक्त इस पल आप जो हो जो रामायण वेद को ध्यान किया तो आपको जानकर आश्चर्य हो गया होगा कि इतना ज्ञानी हमारा ही बीच में उपस्थित है। दोस्तों संकल्प से सिद्धि हो जाएगा, संकल्प ले लो, ये बात आपसे कहता हूँ। आज ये प्रोग्राम में इस पल कल नहीं रहेंगे, अब है, अब जानते हैं कब क्यों कैसे ये जिंदगी भी खत्म हो जाए, कोई नहीं जानता दोस्तों। वर्तमान मेहबर है, भविष्य कोई नहीं जानता है, जो बीत गया वो तो बीत गया, खिसकी नेस हो गया है ना। और इस

कि मैं ये जो रिश्ता है हमारी दोनों की, ने? अपना फर्ज निभाना चाहता हूँ, रिश्ते की गहराई आजमाना चाहता हूँ, जो बारिश के बूंदों में मेरी आंसू पहचान ले, एक साथी एक दोस्त जैसा, ऐसा जो मैं यूं ही आपसे कह लेता हूँ कि बनाना भी चाहता हूँ ना।

उजाले अपनी यादों की हमारे साथ रहने दो। ना जाने किस गली में जिंदगी की, हाँ ये जिंदगी की शाम हो जाए।

या दिन हुआ है तो रात भी होगी, हो मत उदास कभी तो बात होगी। इतनी प्यार से दोस्ती की है, जिंदगी रही तो मुलाकात भी होगी। यही कि हिट स्टेशन द म्यूजिक स्टेशन फॉर हिंदुस्तानी रेडियो।

गजल। पद्मश्री कुमार सानू।

या बेस्ट मैन से और हमारे साथियों कैसा लगा ये जो है, कहता हूँ मैं गीत गजल के साथ जो है शेर शायरी, जैसे गुलाब के फूल में खुशबू उसी तरह से शेर शायरी मुझे भी पसंद है, आपके सुनाता चलता हूँ। कि हर कोई अगर निभाने वाले हो जाए या बन जाए तो तजुर्बा सीख कैसे मिलेगी, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए ठोकर लगना भी जरूरी होता है हमारे साथियों।

यही जो होते हैं फूलों में गुलाब का फूल और संगीत में गीत में जो जाकर गजल ही होते हैं। साफ है दिल मेरा, कह रहा हूँ कह रहा हूँ ना, फिर भी लगाए इल्जाम सह रहा हूँ ना। ना भूख लगती है ना ही लगती है प्यास, बारिश है अगर तू तो हवा बनकर साथ तेरे बह रहा हूँ ना। अधूरी है जिंदगी बिना तेरे, इसलिए तो साथ तेरे रह रहा हूँ। हमारी साथियों, फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो स्टेशन।

तो ये मैं कह दूं आपसे कि आज नहीं तो कल उसे भी ये एहसास हो जाएगा कि नसीब वालों को मिलते हैं फिकर, फिकर करने वाले हमारे साथियों।

अकेला था तो अकेला है ये और बोल था इस संगीत की हमारे साथ। फिर भी जिंदगी में हम अकेले आए हैं ना, अकेले आए हैं, अकेले जी रहे हैं, अकेले फिर जाना है, कोई साथी नहीं। मिल जाता है साथी कुछ पल के लिए, कुछ घड़ी के लिए, और जीवन साथी कोई अपना ढूंढ लेता है, मिल जाता है, क्योंकि प्रकृति की नेम है ना। लोगों को झूठे लोगों में सिर्फ अच्छाई और अच्छे लोगों में बुराई नजर आते हैं ना, क्या बात है बतलाओ।

तो यही तो मैं इस वक्त अपनी और मित्र दोस्त से सवाल कर रहा हूँ भैया राजेश बदलू से, कि भैया राजेश दोस्त की कोई बात बुरा लगे तो खामोश हो जाओ, अगर वो दोस्त है तो उसे उस बात का दुख होगा, और अगर ना हुआ तो तुम समझ लेना कि वो तुम्हारा दोस्त नहीं। सही गलत मुझे मालूम नहीं, भैया राजेश बदलू मुझे बतलाएगा।

साथियों, संगीत आप ही के नाम ने, ये जिंदगी है, वक्त गुजरेगा, हम बिखर जाएंगे, कौन जाने हम किधर जाएंगे, हम दोस्ती की परछाइयां है साथियों, जहां आप हुए तन्हा वहीं हम नजर आएंगे, तो यही ढूंढते रहना भैया राजेश बदलू जी।

0: कहा साथी हूँ। साथ जुड़े रहो और इसी तरह से हौसला बढ़ाते रहो। आप जो फोन करते हो दमोदी को एक्स बदन के
1: इस कदर
0: हजूत में खुद है
1: प्यार।

तो यूं ही आपसे ये बतलाता चलूं मैं कि तेरी मुस्कुराहट मेरी पहचान है, तेरी खुशी मेरी जान है, कुछ भी नहीं मेरी जिंदगी, बस इतना समझ ले कि तेरी दोस्ती ही मेरी शान है। क्यों

कोई प्यार भरा कोई दर्द भरा गीत गजल जिसको जो पसंद है हर एक को अपने अपने पसंद होता है ना हमारे साथियों और इसमें से

फाहम के हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से ये कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यूं ही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेट होने के लिए तैयार कीजिए 9735 तक 3 तक 7 फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

ये मैं आपसे बतला दूं, कह दूं, जुबा से नाम लेते ही आंखों से आंसू छलक जाते हैं। कभी हजारों बातें करते थे, कभी हजारों बातें क्या करते थे, आज एक बात के लिए तरस जाते हैं। दोस्तों, ये जिंदगी में जो एक साथ आप जाकर ढूंढे, फिर भी यही जो कभी नहीं जानते कि तुकोम्स में भविष्य में क्या होगा, वर्तमान में जो हो रहा है तो वो हो रहा है लेकिन भविष्य नहीं जानते। सारी रात ना सोए हम, रातों को उठ के कितने रोए हम, बस एक बार मेरा कसूर बता दे रब्बा, इतना प्यार करके भी क्यों ना किसी के हुए तुम। यूं ही और आपसे बतलाते चलते हैं क्यों ऐसा हुई होता है, ये बातचीत हो रहा है ये प्यार व्यार में ऐसा हमारे साथियों। और जबकि यूं ही मैं आपसे ये बतला दूं, गौर करके ध्यान देके सुनो,

24 घंटे लगातार चलता है। जब भी आप रेडियो ऑन करेंगे हमें अवश्य पाएंगे सारी सृष्टि में, दुनिया में, हर एक जगह, क्योंकि इंटरनेट के जरिए से प्रस्तुत होता है। और पत्थरों से प्यार किया, नादान थे हम, गलती हमसे हुई क्योंकि इंसान थे हम। आज जिन्हें हमसे बात करने में तकलीफ होती है, कभी उस शख्स का जान थे हम ना हमारे दोस्तों। और ये बातें तीत होते होते कुछ संगीत जो हम आपके लिए पेश करें, लाइव ये कार्यक्रम प्रस्तुत होता है। और हर एक को फिर से हृदय से धन्यवाद, तहदिल से शुक्रिया कहते हुए

तो प्रोग्राम में साथ जो दे रही है हमारी अजनबी जी, हमेशा साथ जो देती आकर यहाँ शेर शायरी करती है, मेरे तरफ से उनको जो है तहे दिल से शुक्रिया। और अजनबी जी साथ देने के लिए, लोग कहते हैं जिसे हद से ज़्यादा प्यार करो वो प्यार की कदर नहीं करता, पर सच तो यह है कि प्यार की कदर जो भी करता है उसे कोई कोई प्यार ही नहीं करता। बतलाइए क्या बात है इसके बारे में।

आवाज जो है द हार्ट रॉप ऑफ मिलियंस, माइती मुकेश जी की आवाज है, डेट भरी आवाज ने, शब्दों में आवाज में वो आप महसूस करते हो, एहसास भी दिलाता है ना? इसे को प्यार कहते हैं। अकेले आए हैं इस दुनिया में, इस जहान में और संसार में, अकेले ही जाना है, अकेले जीना है, किस पे यकीन करें हमारे साथियों। क्या लिखूं जिंदगी के बारे में, क्या लिखूं जिंदगी के बारे में, वो लोग ही बिछड़ गए जो जिंदगी हुआ करते थे। या यही कहना था मेरा और मत

अनूप जलोता जी की आवाज है कलाकार ने। इसकी तारीफ किन शब्दों में किया जाए।

शब्दों जैसे वफा और बेवफा ये किताबों में पुस्तकों में रह गया। हमने तो कब से पता था, हमें तो कब से पता था कि तुम बेवफा हो। बस तुमसे प्यार इसलिए करते रहे कि तुम शायद तुम्हारी फितरत बदल जाए। हमारे साथियों दोस्तों, कल जो तुम हजार वादे करते थे मुझे पाने के लिए, आज तो एक बहाना ढूंढ रहे हो मुझे छोड़ जाने के लिए। साथियों, जहां भी आप हो खुशहाल रहो, ये जिंदगी है ना, जिंदगी में आंसू का हर कतरा दुनिया की हर चीज से ज्यादा महंगा है। हाँ, आंसू की हर कतरा दुनिया की हर चीज से ज्यादा महंगा है, लेकिन कोई उसकी कीमत उस वक्त तक नहीं जान सकता है जब तक वो उसकी अपनी, हाँ, जो उसकी अपनी आंखों से ना निकले। हमारे प्रिय और दोस्तों, साथियों और कार्यक्रम फाहुन के आप जो सुन रहे हो ना।

वाह रे वाह, वाह रे वाह, कलाकार ने सब्र, सब्र की दो सूरतें हैं, एक जो नापसंद हो उसको बर्दाश्त करना और जो पसंद हो उसका इंतजार करना।

आवाज जो है लाखों करोड़ों के दिल चुराने वाला, माइती मुकेश जी। हाँ, माइती मुकेश।

खामोशी भी प्यार की जुबान होती है, या अकेला महसूस करो जब तन्हाई में, याद मेरी जब आए जुदाई में। मैं तुम्हारे पास हूँ हर पल, हाँ मैं तुम्हारे पास हूँ हर पल, जब चाहे देख ले अपने परछाई में। ये कहना है और मेरा

हर एडवर्टेंसी के लिए मौत के समाचार फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है आप जाइए हमारा वेबसाइट ही और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 07 3652 2047। मेरी इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info

फाउंटेन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यूं ही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाउंटेन के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेट होने के लिए तार कीजिए 9735 तक 3 तक 7 फेटा फाउंटेन हिंदुस्तानी रेडियो।

या चांद रघुनाथ जी, मैंने आपके नाम लेना भूल ही गया, माफ कर देना। फिर भी आप तो है हमेशा हमारे साथ देते हैं, और जो है चांद रघुनाथ भैया, उनकी धर्म पत्नी फीस गोली ऊक फहार से बजाते हैं।

या मुकेश जी था, सुने आप कुलफत, आपको भी हृदय से धन्यवाद। जैसे मैंने आप भैया चांद रघुनाथ को यही कह चुका, और धन्यवाद भैया चांदी फिन, और जो है फाहून आप सुन रहे हो, साथ आप जो देते हैं फिर भी हर एक कोई को, और मेरे तरफ से बधाइयाँ शुभकामनाएं इस पल इस घड़ी के लिए। हमारी साथियों यूँ ही बतला दूँ आपसे कि ये जो है बात फाहून के मैं आपसे बतला रहा हूँ, 24 घंटे लगातार हम कोशिश ही करते हैं आपकी सेवा करने के लिए, और यही सोचते हुए और जो है यही सोचते हुए कि आपको पसंद आता हुआ होगा। हाँ भैया चांद गुना जी, ये तो बात है, और धीरे धीरे वक्त बीत रहा है, कट रहा है आपके साथ मिलकर। तो साथियों ये कह दूँ आपसे, जरा से संगीत जो मैं आपके लिए पेश कर रहा हूँ।

यही कहना मेरा है प्रोग्राम में ना कि एक बचपन का जमाना था चांद भैया, जिसमें खुशियों का जमाना था, चाहत चांद को पाने की थी और मगर दिल तितली का दीवाना था, हाथ में कागज की नाव थी और मौसम बड़ा सुहाना था। क्यों हो गए हम बड़े इसी अच्छा, हाँ दोस्तों, क्यों हो गए हम बड़े इसे अच्छा, तो वो बचपन था और वो बचपना का जमाना, वो पल था, वो घड़िया था, बेहतर था ना, क्या बताइए।

और ये प्रोग्राम में संगीत ना सपनों से और शब्दों से बहुत कुछ एहसास हो जाता है। साथियों, टूटा हुआ फूल जो है खुशबू दे जाता है, बीता हुआ पल यादें दे जाते हैं ना। हर व्यक्ति हर कोई का अपना अंदाज होता है। कोई जिंदगी में प्यार कोई जिंदगी में प्यार तो कोई प्यार में जिंदगी दे ही जाता है। जबकि रोना धोना तो है ना इस वक्त,

प्यार भरा नगमा जो है, प्यार भरा नगमा वही तो है और क्या है। यू ही गुजारिश पर ये मैं एक बार और कहना चाहता हूँ दोस्तों, मेरे साथियों, एक मित्र है कुमार मारही, हमारे भैया, उनकी धर्म पत्नी घर के लक्ष्मी अर्धांगनी माला मारही, इन लोगों की एक दुकान है इसकी और हुफ कादे के आसपास में, खुद सिर्फ इस दुकान ना वहाँ पे गहना वो बेचता है, फिर भी सोने के और आभूषण आप वहाँ खरीद कर सकते हैं। मैं बड़ी बड़ी और ये आज के कार्यक्रम में साथ दे रहे प्रोग्राम सुन रहे हैं, एक नगमा एक गीत सुनना चाहता है हमारे भैया कुमार जी, कुमार खरा खदान चलाएंगे आपके लिए। और कह देता हूँ फिर से एक बार जो सुनना आप चाहते थे, टूटा हुआ फूल खुशबू दे जाता है, फूल में वही तो है हमेशा मैं कहता हूँ गीत गजल जब मैं चलाता हूँ ना तो कहता हूँ कि और गीत गजल के साथ जो है शेर शायरी ना हो तो वो कैसा और प्रोग्राम है हमारी। टूटा हुआ फूल खुशबू दे जाता है भैया कुमार मारही जी, बीता हुआ पल यादें दे जाता है, हर व्यक्ति हर शख्स जो है का अपने अपने अंदाज होता है ना, meaning. कोई जिंदगी में प्यार तो कोई प्यार में जिंदगी दे जाता है, हमारे भैया कुमार मारहे के तरफ से अपनी धर्म पत्नी माला के नाम ये प्रोग्राम में ये नंबर है।

फन हम हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यूं ही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेट होने के लिए तार कीजिए 9735 तक 3 तक 7 फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

समय बताने वाले तो बहुत हैं, लेकिन समय पर काम आने वाले बहुत कम हैं। सभी सुनने वालों को मेरी ओर से नमस्कार। मैं फिर आप सबके लिए प्रोग्राम लेकर आ गई हूँ, जिसका नाम है स्वप्न विज्ञान, यानी सपने। सपने तो हम सबको ज़रूर आते हैं, कभी अच्छे सपने तो कभी बुरे सपने। अच्छे सपनों में हम खुश होते हैं, बुरे सपनों में हम डर जाते हैं। सपने भी बहुत प्रकार के होते हैं सुनने वालों। आज मैं आप सबको बताने वाली हूँ कि कुछ पूर्वाभासी तथा प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्वप्न, कि जिन लोगों को सपने आए उसका उनको पूर्वाभ्यास पहले से पता चल गया था और उनके सपने इतने ऐतिहासिक बन गए कि दुनिया भर में मशहूर हो गए। ऐसे ख्वाब यानी सपने उन्हीं व्यक्तियों को आते हैं जिनका जीवन कुछ आध्यात्मिक रहा हो अथवा जिनमें सत्व गुण की प्रधानता रही हो। इनका समाधान फ्रायड के सिद्धांतों से कदापि नहीं हो सकता। उन स्वप्नों में बड़ी विचित्रता होती है जिनके द्वारा बहुत से व्यक्तियों को भावी घटनाओं का पूर्व ज्ञान हो चुका है तथा आज भी हो रहा है। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में कम से कम एक दो बार ही ऐसे प्रसंग अवश्य आते हैं कि उसके सपने सच होते हैं, जिसके कुछ ही उदाहरण दिए जा रहे हैं। सुनने वालों, ऐसे बहुत कम व्यक्ति हैं कि जिनको सपने आने से पहले ही उसका पता चल जाए कि सपने क्यों आएगा और सपने में क्या क्या चीज़ें उनको दिखाई देंगी।

महाराज हरीश चंद्र का स्वपन। भारत के बहुत बड़े राजा हुए हैं जिनका नाम हरीश चंद्र था और वो सच के देवता कहलाते थे। सुनने वालों, उन्होंने कभी जिंदगी में झूठ नहीं बोला। महाराजा हरीश चंद्र ने सपने में ही महर्षि विश्वामित्र को अपना संपूर्ण साम्राज्य दान कर दिया था और अगले ही दिन उन्होंने वास्तव में अपना राज्य त्याग दिया। सुनने वालों, महाराजा हरीश चंद्र जी को ये सपना आया कि उन्होंने अब विश्वामित्र जी को सारा राज्य दान कर दिया और उन्होंने अगले दिन वही सच कर दिखाया और अपना सारा राज्य दान में दे दिया और उसे त्याग दिया। अभिनेता चंद्र मोहन का रेस का घोड़ा। एक प्रसिद्ध अभिनेता स्वर्गीय चंद्र मोहन का घोड़ा रेस में दौड़ने वाला था, परंतु रात को ही चंद्र मोहन को स्वप्न आया कि उनका घोड़ा दौड़ते दौड़ते खड्डे में गिर कर मर गया है और सचमुच उनका घोड़ा ठीक उसी स्थान पर मर गया जहां उन्होंने स्वप्न देखा था। सुनने वालों, अब हम आगे बढ़ते हैं। बाइबल में बुद्धिमान का स्वप्न। बाइबल में बालक यीशु ने जन्म पर उन्हें देखने आ रहे बुद्धिमान लोगों में से एक को सपने में हेरोड की तरफ ना जाने का निर्देश मिलता है और वह दूसरे रास्ते से अपने देश लौट जाते हैं। जोसेफ के सपने में एक देवदूत उसे बच्चे और पत्नी के साथ मिस भाग जाने का निर्देश देते हैं। इन स्वप्नों के कारण यीशु के प्राणों की रक्षा हो सकी।

हिल प्रिक तथा प्राचीन शिलालेख। प्रोफेसर हिल प्रिक ने एक प्राचीन शिलालेख का संपूर्ण एवं स्पष्ट उत्तर स्वप्न में ही एक बेबीलोन के गाइडर से प्राप्त किया था।

वासुदेव का स्वप्न। मथुरा के कारावास से भगवान श्री कृष्ण को बचाकर नंदगांव ब्रिज में पहुंचाने में सपनों का योगदान कुछ कम ना था। उसी रात माया रूपनी देवी वासुदेव के स्वप्न में आकर उन्हें ऐसा करने का आदेश ना देती तो सत्यवादी वासुदेव शायद ऐसा कभी नहीं करते।

लेखकों की रचनाओं की प्रेरणा। रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के कई गीतों के भाव स्वप्न में ही प्राप्त हुए थे और बाण भट्ट की प्रसिद्ध पुस्तक कादंबरी भी उनके स्वप्न की ही देन है। सुनने वालों, आप सब जानते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर बहुत बड़े कवि लेखक हुए हैं जो बंगाल के थे। तो उनको जितने भी, उन्होंने एक पुस्तक लिखी कादंबरी, और उनका उन्हें ज्ञान स्वप्न में ही पहले हो गया था।

प्लूटक के अनुसार सीजर की पत्नी कानीलिया ने एक रात स्वप्न देखा कि उसके पति सीजर की हत्या हो गई है तथा विरोधियों का षड्यंत्र सफल हो गया है। अगले दिन उसने अपने पति से अनुरोध किया कि आज वह दरबार ना जाएं। उसी दिन दरबार में उनकी हत्या हो गई।

हेलो, आज मैं आपको अलग अलग लोगों के वृत्तांत सपनों में सुना रही हूँ जिनको सपने आए और वह हकीकत में वो सच हुए। अब हम आगे चलते हैं सुनने वालों। JW डने का स्वप्न। JW डने ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक में अपने एक स्वप्न का वर्णन किया है। वह एक बार स्वप्न में एक ऊंची पहाड़ी पर खड़ा था जो एक द्वीप था और जो ज्वालामुखी के खतरे में पड़ने वाला था क्योंकि उसकी दरारों से भाप उफन कर निकल रहे थे। उसके मन में वहाँ के 4000 निवासियों को बचाने की लालसा जागृत हुई। उसने उसकी यथार्थ संभव चेष्टा की और जितनों को बचाया जा सकता था उसने बचाया। कुछ ही दिनों बाद डने ने डेली टेलीग्राफ नामक पत्रिका में माउंट पीले ज्वालामुखी के विस्फोट की चर्चा पड़ी, जिसमें पश्चिम द्वीप समूह में मार्टिनी के द्वीप के सेंट पियर नगर में 40,000 व्यक्तियों को उनकी प्राण रक्षा के लिए जहाजों द्वारा उन्हें स्थानांतरित करने का जिक्र था।

भूपूर्व राष्ट्रपति कनेडी की दुर्घटना। कनेडी को अपने साथ होने वाली दुर्घटना का अभ्यास स्वपन द्वारा एक दिन पहले ही हो गया था। वह टेक्सास की यात्रा पर गए और गोली लग जाने के फलस्वरूप उनकी यह लीला समाप्त हो गई।

यह है फाहन हिंदुस्तानी रेडियो। आप सब सुन रहे हैं फाहन हिंदुस्तानी रेडियो। सुनने वालों, अब हम आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड डफरिन की प्राण रक्षा। यह सन 1885 यानी आख्तिन फाइफन ताख्तक में भारतवर्ष के वायसराय थे। एक बार आयरलैंड में उन्होंने अपने किसी मित्र के घर पर स्वप्न देखा कि जंगल में जाते हुए किसी व्यक्ति के करहाने की आवाज़ सुनी, यानी रोने की आवाज़ सुनी, जो पीठ पर बड़ा सा संदूक लादकर ले जा रहा था, जो इतना विकराल तथा विभक्त था कि वह डरकर जहां के तहां ठहर गया। डफरिन ने जोर से पूछा, इस बॉक्स में क्या है? इतने पर ही वह व्यक्ति अदृश्य हो गया और डर के कारण उनकी नींद खुल गई। कुछ समय पश्चात उनको फ्रांस में राजदूत के रूप में जाना पड़ा। एक दिन ब्रांड होटल में किसी राजनीतिक सम्मेलन में भाग लेने के लिए जब वह ऊपर की मंजिल में जाने वाली लिफ्ट के पास थे तो वह देखकर चकित रह गए कि स्वप्न में देखा गया विभत्स चेहरे का व्यक्ति ही उस लिफ्ट को चला रहा है। वह होटल के मैनेजर के पास गए और उस लिफ्ट मैन के बारे में पूछताछ करने लगे, तो इतने में ही वह लिफ्ट मकान की पांचवी मंजिल तक पहुंचकर टूट कर गिर पड़ी और उसमें सवार सभी मारे गए। स्वप्न के कारण उनकी प्राण रक्षा हो सकी।

अब हम आगे बढ़ते हैं सुनने वालों, युद्ध भूमि में अर्जुन का स्वप्न। माँ भारत में जब अभिमन्यु मारा गया तो उसके पिता अर्जुन ने आवेश में आकर यानी गुस्से में आकर दूसरे दिन सूर्यास्त से पूर्व जयद्रथ का वध करने की कठोर प्रतिज्ञा की। अपने शयन कक्ष में जाकर यानी अपने स्लाप कामर में जाकर श्री कृष्ण के आदेशानुसार महर्षि व्यास द्वारा बताए गए शिव मंत्र का जाप करता हुआ वह निद्रा देवी के अधीन हो गया। निद्रावस्था में अर्जुन ने एक स्वप्न में देखा। स्वप्न में श्री कृष्ण बोले, अर्जुन तुम पशुपत नामक सहारक अस्त्र से ही कल जयद्रथ को यम सदन पहुंचा सकते हो, इसलिए मन ही मन में शंकर जी का स्मरण करो। भगवान शंकर की कृपा से उनके भक्त होने के नाते यह शस्त्र तुम्हें अवश्य ही प्राप्त होगा। श्री कृष्ण के सुझाव के अनुसार अर्जुन ने स्वप्न में ही आचमन किया और शंकर जी का स्मरण करना प्रारंभ कर दिया। स्वप्न में ही अंतरिक्ष में उड़ते रहे। उत्तर दिशा में एक सफ़ेद पर्वत देखा। कुबेर सरोवर के दर्शन हुए जिसमें खिला कमल पुष्प देखा। गंगा तट पर साटिक मुनियों के पर्वत थे। मंत्रशर पर्वत देखा। ब्रह्मतुंग एवं अन्य काले पहाड़ देखे। रत्नों से भरा समुद्र देखा। फिर एक पर्वत पर भगवान शंकर के दर्शन हुए। प्रणाम सूक्ति उपरांत अर्जुन की अभिलाषा देखकर हंसते हुए बोले, वत्स पास के सरोवर से धनुष बाण ले आओ। वहां पर दो नागों का परिवर्तन देखकर अर्जुन ने उनसे पशुपात अस्त्र देने की प्रार्थना की। शंकर जी ने अभिदान के साथ पशु अस्त्र अर्जुन को प्रदान किया। अर्जुन का वह स्वप्न सिद्ध हुआ।

सूटकेस जहाज का दृश्य। डॉक्टर मेसन ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि 29 जनवरी यानी कि निघंतन तक को कप्तान समुद्र का एक जहाज सिडनी से कोयला भर कर चला। 9 फरवरी को उसमें पानी भरने लगा और वह एक गांव में जा बैठे और एक सप्ताह इसी प्रकार बहते रहने के बाद 16 फरवरी को किसी जहाज ने उन्हें बचा लिया। 9 फरवरी को ही कप्तान की 13 वर्षीय कन्या को स्वप्न आया कि उसके पिता का जहाज डूब गया और उसका पिता फटे कपड़े पहने घर आया है। उसने अपनी माँ को जगाकर स्वप्न सुनाया।

ट्रिलर द्वारा वर्णित स्वप्न। श्री ट्रिलर ने अपनी पुस्तक में एक स्वप्न का वर्णन किया है। इंग्लैंड का प्रसिद्ध जहाज टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा पर अमेरिका जा रहा था। इंग्लैंड में एक व्यक्ति ने उसका एक टिकट खरीदा। जहाज रवाना होने से 10 दिन पहले उसने एक स्वप्न देखा कि जहाज का एक सिरा ऊंचा उठ गया है और उसके यात्री आसपास तैर रहे हैं। न्यूयॉर्क से कोई तार आने पर उन्हें यह यात्रा स्थगित करनी पड़ गई और टिकट वापस कर दिया। टाइटैनिक 10 अप्रैल 1912 को रवाना हुआ और 14 या 16 को डूब गया। सुनने वालों, आप सबको तो पता है कि टाइटैनिक के ऊपर फिल्म भी बनी है।

अब हम आगे बढ़ते हैं सुनने वालों। मेरना ने भावी पति को बचाया। पोलैंड की एक लड़की ने मेरना को एक रात स्वप्न आया कि उसका भावी पति, जो सेना में काम कर रहा था, किसी सुरंग में फंसा है जहाँ मोमबत्ती जल रही है, और वह बार बार मेरना का नाम लेकर पत्थर हटवाने की प्रार्थना कर रहा है। डॉक्टरों ने उसे पागल घोषित कर दिया, पर एक दिन वह एक किले के पास से गुजर रही थी कि एकाएक चिल्लाने लगी कि यही वह स्थान है जहाँ उसका भावी पति फंसा हुआ है। पत्थरों को हटाकर दरवाज़ा निकाला, जहाँ से निर्बल मैली कुचैली हालत में एक व्यक्ति घिसट कर बाहर निकला, जो फौजी स्टोर की रखवाली कर रहा था, जहाँ एक गोला गिरा था और वह दब गया तथा खाद्य सामग्री और मोमबत्तियों के सहारे जीवित बना रहा। श्री विष्णु महादेव भट्ट सन 1910 में श्री सावकार के दल में एक क्रांतिकारी थे, और सन 1915 में लोकमान्य तिलक, केसरी और मराठा पत्रों के सहायक संपादक थे। उन्होंने अपनी पुस्तक में 3 स्वप्नों का वर्णन किया है जो इस प्रकार थे।

आगे बढ़ते हैं सुनने वालों, गणेश गीता का ठीक स्थान। उनके एक मित्र श्री डी के साठे BA BSc, एक अच्छे वैज्ञानिक, सोंगली इंजीनियरिंग कॉलेज में गणेश के सच्चे भगत थे। एक दिन उन्होंने देखा कि स्वप्न में कोई अनजान व्यक्ति उन्हें श्री गोध लेकर के घर से गणेश गीता की रेशमी जिल्द खरीदने लाने को कह रहा है, जो ऊपर के कमरे में अलमारी के दूसरे खाने में तीसरे नंबर पर रखी है। चाहे उन्होंने पुस्तक व्यवसाय छोड़ दिया था, फिर भी पुस्तक वहीं मिली। सुनने वालों, कि उन्होंने जो पुस्तक उनको चाहिए थी वो उनके घर की अलमारी के ऊपर ही पड़ी थी और उनको वहीं से मिली। सुनने वालों, ये है आप सबका अपना फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो, और मैं आपको थोड़ा और आगे बताने की कोशिश करूँगी छींक के बारे में। छींक तो हम सबको आती है और छींक को हम अशुभ भी मानते हैं, वो तो आप सब जानते हैं। एक नाक दो छींक, काम बने सब ठीक। छींक प्रायः सभी दिशाओं की खराब होती है। सुनने वालों, हमारा नाक एक है लेकिन अपनी छींक महाअशुभ होती है, वो तो आप सब जानते हो। सुनने वालों, अपनी छींक राम बन गए हूँ, सीता हरण तुरंत ही भय हूँ। गौ की छींक मरण का संकेत देती है, कोशिश करने पर भी यदि छींक ना रुके तो मनुष्य जिस काम के लिए जा रहा है उसमें विघ्न अवश्य होगा। फिर भी सम्मुख छींक लड़ाई भरावे, छींक दहानी द्रव्य विनाशे। पीठ पाछली सुख अभिलाषे, बाई छींक धन सदा प्रकाशे। ऊंची छींक कहे जयकारी, नीची छींक होए भयकारी। शराब संधनी सर्दी से होने वाली छींक, बच्चे और बूढ़े की छींक अथवा हट से छींकना निष्फल होता है। कन्या धोबिन रास्ता वाला विशेष अशुभ होती है। आसन शयन शौच दान भोजन औषधि सेवन विद्यारम्भ और बीज बोने के समय शुद्ध या विवाह में जाते समय छींक हो तो शुभ फलदायक होती है। सुनने वालों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आज मैं आपको सुना रही हूँ छींक के बारे में थोड़ी सी, कि जब हम लोगों को छींक आती है तो हम उसे अशुभ मानते हैं। सुनने वालों, देखो ना, हम लोग हिंदुस्तानी हिंदू लोग उसे अशुभ मानते हैं और बकरा लोग उसे शुभ मानते हैं। क्योंकि यहाँ पर मैंने जब आई तो देखा, जब छींक आते हैं तो कहते हैं खजोन ताइद। मैंने कहा वो छींक आने पर खजोन ताइद कहते हैं कि तुम ठीक ठाक रहो, तुम्हारी सेहत ठीक हो। और हम जब भारत में थे तो छींक आती थी कहते ओहो कहीं बाहर जा रहे हो, पैर झाड़ के जाओ, जाओ रुक जाओ एक सेकेंड के लिए। सुनने वालों, ये सब जो मैं आप सबको बता रही हूँ या सुना रही हूँ, ये सब हमने स्वप्न विज्ञान से निकाला है। अब हम आगे बढ़ते हैं छींक पर कार्य, कि जब हमें छींक आती है हमें कार्य करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए और उसका फल क्या है। छींक पर कार्य, गमन करना, कि हम जब कहीं जा रहे हैं घर से निकल के तो कार्य में बाधा, उसका फल मिलता है अगर किसी को छींक आ जाए तो। एक से अधिक छींक, कार्य सरलता से संपन्न। कहते जब एक से ज़्यादा छींक आए तो कार्य शुभ हो जाता है। प्रवासी के बाईं ओर अशुभ है, कार्य करने जाना खरीद में लाभ। धार्मिक अनुष्ठान या यज्ञ विधन, अगर छींक आ जाए, हम कुछ धार्मिक कार्य करने के लिए जा रहे हैं तो उसमें बाधा आ जाती है। व्यावसायिक कार्य, कि अगर हम वैसे कुछ कार्य करने बाहर जा रहे हैं तो व्यापार में वृद्धि होती है। नए मकान में प्रवेश स्थगित करें।

इस पृथ्वी पर हर व्यक्ति को कोई ना कोई समस्या है ही, पर व्यक्ति की हर समस्या का समाधान भी उसके पास ही है। सभी सुनने वालों को मेरी ओर से नमस्कार। मैं हूँ आपकी सेविका बबली आसरा।

खेतवा के पीछे रहती थी नानी, रोज रोज गगरिया में भर लाती थी पानी। एक रोज मुझे नानी से मुलाकात हुई, मैंने नानी से मांगा एक गिलास पानी, नानी मुझे छुटकार दिया। हमारे घरे कारज परोसिन भाई नाराज न होइए, हमारे घरे कारज परोसिन भाई नाराज न होइए, नाराज न होइए जी नाराज न होइए, नाराज न होइए जी नाराज न होइए, हमारे घरे शादी परोसिन भाई नाराज न होइए, हमारे घरे कारज।

हाथ कार पर बेवता कार देखो इम्पाला कार देखो संग में ना चोर यार हमारे घर शादी पर उसने भाई नाराज न होइए हमारे घर शादी

से मीनी को तो होइगे तीन खेलो सब आज हमारे घर कारज परोसिन भाई नाराज न होइए हमारे घर शादी परोसिन भाई नाराज न होइए नाराज न होइए जी नाराज न

वक्रतुंडा महाकाया सूर्यकोटि संप्रभा निर्विधिनं कुरुमे देवा सर्वकार्यशु सर्वदा रूबरू मिलने का मौका नहीं पा रहा हूँ, अथ शब्दों से अपनों को नमन कर लेता हूँ। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप में श्रेष्ठ होता है, इसीलिए आपकी श्रेष्ठता को हृदय से नमस्कार करता हूँ। फाहुन रेडियो के सभी सुनने वालों को हम हार्दिक से अभिनंदन करते हैं और ये आशा रखते हैं कि हम आज ही कुछ नया संदेश लेकर आपके साथ जुड़ गए हैं।

0: सुनने वालों, हमारे साथ स्टूडियो में भी उपस्थित बबली आसरा जी भी है, वो अपना एंट्री लेते हैं।
1: संबंध तो सुदामा और कृष्ण जैसा होना चाहिए। एक ने कुछ मांगा नहीं, दूसरे ने सब देके जताया नहीं। सभी सुनने वालों को मेरी ओर से नमस्कार।

जैसे हर सप्ताह की तरह तेरा राम जी करे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को डरे, हम उसी ओर बढ़ रहे हैं।

करे बेड़ा पार उदासी मन काहे को डरे। सुनो लो, ये कार्यक्रम ज्योति का प्रकाश है और इसमें हम सब कुछ न कुछ संदेश लेकर हर बार आपके साथ उपस्थित हो, और जो इस समय अपने घर से बैठ करके ये कार्यक्रम को सुन रहे हैं, जो कार्यक्रम को अपने कार में और सफ़र करते हुए सुन रहे हैं, सभी को हार्दिक से अभिनंदन करता हूँ। और आशा यही है कि आज का संदेश आपके लिए भी कुछ ना कुछ उसमें से आपके लिए निकले।

0: बबली जी भी तैयार हो चुके हैं अपने ओर से संदेश रखने के लिए। उधर अनुराधा जी, बबली जी पहले आप अपने ओर से और संदेश को रखिए।
1: हाँ जी जरूर। सुनने वालों, आज मैं आप सबको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ और ये कहानी जिंदगी का एक सबक भी दे जाती है। तो मैं अपनी कहानी शुरू करती हूँ। जीवन के 20 साल हवा की तरह उड़ गए, फिर शुरू हुई नौकरी की खोज। ये नहीं वो दूर नहीं पास, ऐसा करते करते दो तीन नौकरियां छोड़ते एक तय हुई, थोड़ी स्थिरता की शुरुआत हुई। फिर हाथ आया पहली तनख्वाह का चेक, वह बैंक में जमा हुआ और शुरू हुआ अकाउंट में जमा होने वाले शून्यों का अंतहीन खेल। दो तीन वर्ष और निकल गए, बैंक में थोड़े और शून्य बढ़ गए, उम्र 25 हो गई। सुनने वालों, ये जो कहानी का नायक है वो अपनी कहानी सुनाना शुरू कर रहे हैं।
0: यानी कि ये हम सब के साथ घटित होते हैं ना?
1: हाँ जी।
0: और हमारे शुरुआत में, यानी कि जब हम 20 साल तक बस पढ़ाई लिखाई में नौकरी का खोज करते हैं,
1: जब नौकरी मिल जाती है तो पहली तनख्वाह, पहली सैलरी हाथ में आती है और उसके बाद फिर बैंक में हम पैसा जमा शुरू करते हैं और फिर दो तीन वर्ष ऐसे निकल जाते हैं, तो उसके बाद उम्र बढ़ती है, हो जाती है 25 साल।
0: यानी कि 25 साल हो जाते हैं और 25 साल होने पे उस समय हमारा जीवन में वो अंबेचास्तमफास्तक मोमेंट आ जाए ना, जहाँ पर हम खास करके उस समय पे हमारे यानी नौकरी लग जाता है।
1: हाँ, नौकरी
0: कोई लग... कोई आज यहाँ पर तो हॉलैंड में कुछ 30 साल के बाद लोग पढ़ाई में और व्यस्त रहते हैं, पर वैसे नॉर्मल 25 साल तक और पढ़ाई के बाद नौकरी की ओर बढ़ जाते हैं।
1: हाँ जी, नौकरी लग जाती है। अब मैं आगे बढ़ती हूँ सुनने वालों। और फिर विवाह हो गया, जीवन की राम कहानी शुरू हो गई। शुरू के एक दो साल नरम, गुलाबी, रसीले, सब नीले गुजरे। हाथों में हाथ डालकर घूमना फिरना, रंग बिरंगे सपने, पर यह दिन जल्दी ही उड़ गए। और फिर बच्चे के आने की आहट हुई, वर्ष भर में पालना झूलने लगा। अब सारा ध्यान बच्चे पर केंद्रित हो गया, उठना बैठना खाना पीना लाड दुलार। समय कैसे फटाफट निकल गया पता ही नहीं चला। इस बीच कब मेरा हाथ उसके हाथ से निकल गया, बातें करना घूमना फिरना कब बंद हो गया, दोनों को पता ही नहीं चला। बच्चा बड़ा होता गया, वो बच्चे में व्यस्त हो गई, मैं अपने काम में। घर और गाड़ी की किस्त, बच्चे की जिम्मेदारी, शिक्षा और भविष्य की सुविधा और साथ ही बैंक में शून्य बढ़ने की चिंता। उसने भी अपने आप काम में पूरी तरह झोंक दिया और मैंने भी। सुनने वालों, यानी कि मियाँ बीबी इतने व्यस्त हो गए, जब बच्चा आया तो बच्चे में सब अपने आप को वो दोनों भूल गए। सब माता पिता के साथ ऐसे ही होता है सुनने वालों,
0: ऐसे ही होते हैं लोग। अपने यानी कि अपने काम में अपने जरूरतें के लिए बिजी रहते हैं और फिर जा कर के यहाँ की, जैसे कि आप कह रहे बच्चों के हुआ क्या?
1: हाँ जी ना, यानी जब 25 की हो गई तो उनका विवाह हो गया, थोड़े दिन घूमे फिरे, साथ अच्छा रहा और फिर बच्चे आने की आहट हुई कि बच्चा होगा। तो जब बच्चा पैदा हुआ तो उसमें दोनों व्यस्त हो गए, बच्चे का लालन पालन करना, सब देखभाल करनी, इसी में।
0: सुनो वालो, आज का और विषय भी यही है कि खुशियाँ कैसे बनाया जाए। अभी अनुराधा जी खूब संदेश रखने वाले हैं। बबली जी, क्यों ना एक गीत के ओर हम बढ़ते हैं और गीत के बाद आप अपना और संदेश आगे रखते हैं।
1: हाँ जी जरूर, गीत सुनते हैं हम सब।

0: रे आए रे खुशी, फिल्म खुशी से निकाला गया ये गीत। आज का विषय जो हमारी है कि अपने जीवन में खुशियाँ लाने की आदत बनाइए, उसी ओर हम सब बढ़ रहे हैं। और बबली जी जो अपना संदेश के साथ आगे हम सबको सुनाने वाले हैं, बबली जी।
1: हाँ जी, जरूर। सुनने वालों, इस कहानी का जो नायक है तो वो आगे हमें बताना चाहता है कि बच्चा बड़ा होता गया, वो बच्चे में व्यस्त हो गई, मैं अपने काम में, घर और गाड़ी की किस्त, बच्चे की जिम्मेदारी, शिक्षा और भविष्य की सुविधा, और साथ ही बैंक में शून्य बढ़ने की चिंता। उसने भी अपने आप काम में पूरी तरह झोंक दिया और मैंने भी। इतने में मैं 35 का हो गया, घर गाड़ी बैंक में शून्य, परिवार सब है, फिर भी कुछ कमी है। पर वो है क्या समझ नहीं आया, उसकी चिड़चिड़ बढ़ती गई और मैं उदासीन होने लगा। यानी इस कहानी का नायक बता रहा है कि बच्चा बड़ा हो गया, मेरी पत्नी उसमें व्यस्त रहने लगी, और गाड़ी की किस्त यानी गाड़ी के पैसे देने थे, बच्चे की जिम्मेदारी आ गई, उसकी शिक्षा भविष्य की सुविधा और बैंक में पैसे भरने की चिंता रहने लगी, और मैं अपने काम में व्यस्त हो गया और उसकी पत्नी अपने काम में व्यस्त रहने लगी। इतने में वो दोनों 35 साल के हो गए सुनने वालों, और गाड़ी बैंक में शून्य, परिवार सब है उनके पास, पर फिर भी उनको समझ में नहीं आता कि उनकी जो चिड़चिड़ाहट है वो क्यों बढ़ती जा रही है और वो दोनों क्यों उदास रहने लगे। इस बीच दिन बीतते गए, समय गुजरता गया, बच्चा बड़ा होता गया, उसका खुद का संसार तैयार होता गया। कब 10वीं आई और चली गई पता ही नहीं चला। तब तक दोनों ही 40-42 के हो गए, बैंक में शून्य बढ़ता ही गया। एक नितांत एकांत क्षण में मुझे वो गुजरे दिन याद आए और मौका देखकर मैंने उससे कहा, अरे जरा यहाँ आओ, पास बैठो, चलो हाथ में हाथ डालकर कहीं घूम के आते हैं। उसने अजीब नज़रों से मुझे देखा और कहा कि तुम्हें कुछ भी सूझता है, यहाँ ढेर सारा काम पड़ा है, तुम्हें बातों की सूझ रही है। कमर में पल्लू खोस कर वो निकल गई।
0: तो सुनने वालों, ये संदेश, अगर आप ये संदेश को समझे होंगे तो खुशियाँ कैसे आप बनाने वाले हैं, ये तो बस हमारे घर घर का कहानी है। हम व्यस्त रहते हैं, हम हर एक समय आगे के जरूर सोचते हैं, पर बैंक बैलेंस जो होता है, बबली जी वो कहते हैं कि हम 20 साल के होते तो बड़ा छोटी होते हैं और धीरे धीरे बैंक बैलेंस भी बढ़ने लगते हैं ना, एक एक शून्य आगे बढ़ते रहते हैं।
1: सही बात, सही बात।
0: पर हमें खुशियाँ, हमारा खुशियाँ कहाँ जाता है, उसी कारण हम सब यहाँ बैठे हुए हैं। हमारी खोजी सेना जो संदेश को खोज खोज के रखते हैं हम लोग के लिए, हम सब रेडियो बनाते हैं और कुछ सुंदर सुंदर गीतों के साथ जरूर आपके साथ जो हम सब ये संदेश को बांट रहे हैं।

0: सुनवलो, आज का विषय जो रखा गया है कि अपना खुशियाँ लाने के लिए आदत बनाइए, अपना खुशियाँ लाने के लिए आदत बनाइए और कैसे आप खुशी ला सकते हैं, इस अंतर्गत में आज हम सब कुछ संदेश। बबली जी, क्या आप उस पर ध्यान देते हैं?
1: खुशियाँ लाने के लिए का कोई समय नहीं होता, खुशियाँ आप खुद कोशिश करेंगे तो जरूर आएंगी।
0: तो क्या खुशी के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप किस प्रकार से अपना खुशियाँ को और खोज सकते हैं?
1: खुशी लाने के लिए आप फिल्म देखिए, घूमिए, पिकनिक पर जाइए, इतना अच्छा मौसम है, घर से बाहर निकलिए
0: ताकि आप अपना और यानी कि रिलैक्स, उसमें खुशी आप देखते हैं।
1: हाँ, घर से बाहर जाएंगे, दो लोग मिलेंगे, उनसे बातें करेंगे, तो घर में अकेले होंगे तो बाहर खुशी मिलेगी ज़रूर, क्यों नहीं मिलेगी।

0: बबली जी, और संदेश जो आप आगे और सुनाने वाले हैं, क्या संदेश और है?
1: हाँ जी जरूर, जो कहानी का नायक है वो आगे हमको बता रहा है। तो फिर आया 45वां साल, आंखों पर चश्मा लग गया, बाल काला रंग छोड़ने लगे, दिमाग में कुछ उलझने शुरू हो गई। बेटा उधर कॉलेज में था, इधर बैंक में शून्य बढ़ रहे थे। देखते ही देखते उसका कॉलेज ख़त्म हो गया, वह अपने पैरों पे खड़ा हो गया, उसके पंख फूटे और उड़ गया परदेश।
0: पंख फूटे और उड़ गया परदेश। कहते हैं ना, एक कहावत है कि पंछी कभी अपने बच्चों के भविष्य के लिए घोंसला बनाकर नहीं देते, बस उन्हें उड़ने की कला सिखाते हैं, और जब समय आते हैं तो बच्चे सब उड़ जाते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं राजेंद्र सिंह जी, जो इस समय भारत से हम कोशिश कर रहे हैं। बबली जी, आप अपना संदेश आगे रखिए।
1: हाँ जी जरूर। उसके बालों का रंग भी उड़ने लगा, कभी कभी दिमाग साथ छोड़ने लगा, उसे चश्मा भी लग गया, मैं खुद बूढ़ा हो गया, वो भी उम्र दराज लगने लगी, दोनों 55 से 60 की ओर बढ़ने लगे। बैंक के शून्य की कोई खबर नहीं, बाहर आने जाने के कार्यक्रम बंद होने लगे। अब तो गोली दवाइयों के दिन और समय निश्चित होने लगे। बच्चे बड़े होंगे तब हम साथ रहेंगे, सोच कर लिया गया घर अब बोझ लगने लगा। बच्चे कब वापस आएंगे, यही सोचते सोचते बाकी के दिन गुजरने लगे। एक दिन यूं ही सोफे पे बैठा, ठंडी हवा का आनंद ले रहा था, वो दिया बाती कर रही थी, तभी फ़ोन की घंटी बजी। लपक के फ़ोन उठाया, दूसरी तरफ बेटा था जिसने कहा कि उसने शादी कर ली और अब परदेश में ही रहेगा। उसने यह भी कहा कि पिताजी, आपके बैंक के शून्य को किसी वृद्धाश्रम में दे देना और आप भी वहीं रह लेना। कुछ और औपचारिक बातें कहकर बेटे ने फ़ोन रख दिया। मैं पुनः सोफे पर आकर बैठ गया, उसकी भी दिया बाती ख़त्म होने को आई थी। मैंने उसे आवाज़ दी, चलो आज फिर हाथों में हाथ लेके बात करते हैं। वो तुरंत बोली, अभी आई। मुझे विश्वास नहीं हुआ, चेहरा खुशी से चमक उठा, आंखें भर आईं, आंखों से आंसू गिरने लगे और गाल भीग गए। अचानक आंखों की चमक फीकी पड़ गई और मैं निस्तेज हो गया हमेशा के लिए। उसने शेष पूजा की और फिर मेरे पास आके बैठ गई, बोली, क्या बोल रहे थे? लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। उसने मेरे शरीर को छूकर देखा, शरीर बिल्कुल ठंडा पड़ गया था। मैं उसकी और एकटक देख रहा था, क्षण भर वो शून्य हो गई। क्या करूं, उसे कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन एक दो मिनट में वो भी चैतन्य हो गई।

0: दुनिया में हम आए हैं तो जीना पड़ेगा। और ये सुंदर सा गीत निकाला गया मदर इंडिया से ना बबली जी?
1: हाँ जी, और फिल्म इतनी अच्छी थी, नरगिस जी ने इसमें अभिनय किया, सुनील दत्त और राजेंद्र कुमार और राजकुमार।
0: तो संदेशों में संदेश क्या है और बबली जी?
1: हाँ जी, मैं आगे बढ़ती हूँ सुनने वालों, जो मैं आपको कहानी सुना रही हूँ सुनने वाले, उसमें नायक नायिका अब अपने बारे में बता रहे हैं कि उन्होंने अपने बेटे से कितनी उम्मीदें लगा रखी थी, लेकिन वो तो परदेश चला गया और वहाँ जाके उसने शादी भी कर ली। और वो दोनों सोच में पड़ गए कि अब हम क्या करें। अब मैं आगे बढ़ती हूँ सुनने वालों। उसने शेष पूजा की और मेरे पास आके बैठ गई, बोली क्या बोल रहे थे, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। उसने मेरे शरीर को छूकर देखा, शरीर बिल्कुल ठंडा पड़ गया था। मैं उसकी ओर एकटक देख रहा था। क्षण भर को वो शून्य हो गई, क्या करूं। यानी सुनने वालों, बेटे की बातें सुनकर पिताजी एकदम ठंडे पड़ गए कि बेटे ने ये क्या कैसी बातें कह दी। उसे कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन एक दो मिनट में ही वो चैतन्य हो गई। धीरे से उठी, पूजा घर में गई, एक अगरबत्ती की, ईश्वर को प्रणाम किया और फिर से आकर सोफे में बैठ गई। मेरा ठंडा हाथ अपने हाथों में लिया और बोली, चलो कहाँ घूमने चलना है तुम्हें, क्या बातें करनी है तुम्हें, बोलो। ऐसा कहते हुए उसकी आंखें भर आईं। वो एक टक मुझे देखती रही, आंखों से अश्रु धारा बह निकली। मेरा सर उसके कंधों पर गिर गया। ठंडी हवा का झोंका अब भी चल रहा था। क्या यही जिंदगी है? नहीं, सब अपना नसीब साथ लेके आते हैं, इसलिए कुछ समय अपने लिए भी निकालो। जीवन अपना है तो जीने के तरीके भी अपने रखो। शुरुआत आज से करो, क्योंकि कल कभी नहीं आएगा।

0: खुशी का दिन आया समीर फिल्म से निकाला गया ये गीत, जिसमें अमिताभ बच्चन और शमी कपूर भी काम किए हैं। बबली जी, इस पे आप क्या कहने वाले हैं?
1: हाँ जी, ये फिल्म भी चली थी, लेकिन मैं तो अपनी जो कहानी है मेरी उसके नायक नायिका के बारे में बताना चाहती हूँ कि उन दोनों के लिए भी बड़े दिनों के बाद खुशी का दिन आया था कि उन लोगों ने कहा चलो आज हम घूमने चलते हैं और बाहों में बाहें डालकर हम लोग घूमेंगे। तो इसी से मेरी कहानी समाप्त होती है सुनने वालों।
0: कमर्शियल की ओर हम बढ़ेंगे और उसके बाद में अभी धमाकेदार कार्यक्रम के साथ हम सब आपके साथ जुड़े रहेंगे।

0: सुनने वालों, हमारे साथ जुड़ गए हमारे मास्टर जी राजेंद्र सिंह जी, जो भारत से हमारे साथ जुड़ गए हैं। और मास्टर जी, आपको हार्दिक से स्वागत किया जाता है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। फाउंड हिंदुस्तानी रेडियो के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। और हर बार की भांति हम इस बार भी अपना कार्यक्रम लेके ज्योति का प्रकाश, जो हमारा कार्यक्रम है, 128 देशों में सुनाया जाता है, और उसी के उपलक्ष्य में हम एक कार्यक्रम आज लेके आए। बबली जी ने बहुत ही अच्छा जो अभी प्रसंग सुनाया है, सबको बड़ी अच्छा लगा होगा लोगों को। और जो अपनी प्रसंग चलेगा वो है कि पहले सोचे घबराए नहीं, यानी थिंक फर्स्ट डोंट वरी, एंगल्स में बोले थे, तो उसी के बारे में बातचीत है। बहुत पुराने समय में एक व्यापारी ने किसी धनी साहूकार से पैसा उधार ब्याज पर लिया था, लेकिन व्यापार में नुकसान होने के हो जाने की वजह से वह साहूकार का पैसा लौटा नहीं पा रहा था। तो व्यापारी की एक बेहद सुंदर बेटी थी, साहूकार बड़ा कुटिल था। उसने सोचा कि व्यापारी पैसा तो वापस नहीं कर पा रहा है, तो क्यों ना इसकी परिस्थिति का फायदा उठाया जाए। उसने व्यापारी को एक सुझाव दिया कि अगर वह अपनी बेटी की शादी उस साहूकार से कर दे तो वह व्यापारी का सारा कर्ज माफ कर देगा। व्यापारी बेचारा मरता क्या ना करता, उसने अपनी बेटी की सारी बात बताई, बेटी को उसने अपनी बात बताई सारी। और समस्या बड़ी थी, साहूकार अधेड़ उम्र का कुरूप व्यक्ति था, यानी वो अच्छा नहीं था, नमोही था मान। उस समय बेटी के आगे दो ही रास्ते थे, पहला या तो साहूकार से विवाह करने से इनकार कर दे और अपने पिता को कर्ज में दबा रहने के, दूसरा साहूकार से खुशी से विवाह कर ले ताकि उसका पिता स्वतंत्रता से रह सके। मित्रों, अक्सर हमारे जीवन में भी ऐसे मोड़ आते हैं जब हमें यकीन होने लगता है कि कोई रास्ता नहीं बचा और अब हम बुरी तरह फंस चुके हैं। अखबारों में सुनने में आता है कि लोग आत्महत्या कर लेते हैं, लेकिन अपने दिमाग को पानी की तरह रखिए, एकदम निर्मल शांत और चलायमान। पानी को देखा है, पानी हर जगह से अपना रास्ता निकाल ही लेता है, ठीक वैसे ही बन जाओ। आगे देखिए लड़की ने क्या फैसला लिया। लड़की ने साहूकार के आगे एक शर्त रखी कि साहूकार एक थैला लाए और उसमें दो गोलियां डाले, एक सफेद रंग की तथा दूसरी काले रंग की। इसके बाद लड़की उस थैले से आंख बंद करके कोई एक गोली निकालेगी। गोली अगर काली निकली तो लड़की साहूकार से विवाह कर लेगी और उसके पिता का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। साथ ही अगर गोली सफेद निकली तो भी पिता का कर्ज माफ किया जाएगा, लेकिन लड़की साहूकार से विवाह नहीं करेगी। साहूकार तुरंत बात मान गया और जल्दी एक थैला लेकर आ गया। अब वह जब थैले में गोलियां डाल रहा था तो लड़की ने देखा कि साहूकार ने चालाकी से दोनों गोली काली ही थैले में डाल दी। अब लड़की परेशान हो गई कि अब वह करे तो क्या करे, साहूकार का भांडा फोड़ भी दे तो भी वह दूसरी किसी चाल में उनको जरूर फंसाएगा। लड़की कुछ सोचकर आगे बढ़ी और उसने थैले से एक गोली निकाली और गोली बाहर निकालते ही उसे हाथ से चिपका दिया, जिससे गोली नाली में जा गिरी। लड़की बोली, माफ करना, गोली मेरे हाथ से छिटक गई, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, थैले में अभी दूसरी गोली भी तो है, उसी से देख लेते हैं। अगर गोली काली निकली तो मैंने सफेद गोली उठाई होगी और थैले में गोली सफेद निकली तो मैंने काली उठाई होगी। व्यापारी ने थैले में हाथ डाला तो देखा काली गोली निकली। व्यापारी बोला, आहा बेटी, थैले में काली गोली बची है, इसका मतलब तुमने सफेद गोली चुनी थी। साहूकार बेचारा बोलता भी क्या, अगर बोलता तो चोरी पकड़ी जाती। इस प्रकार पिता का कर्ज भी माफ हो गया और बेटी ने अपनी रक्षा भी कर ली। जब तक आप समस्याओं के समाधान के बारे में नहीं सोचेंगे तब तक आप समस्याओं में ही उलझे रहेंगे। हमें इस बात कहानी से शिक्षा ये मिलती है कि अपने विचारों को खुलने दें, थोड़ा हटकर सोचें, यह सोचें कि हर समस्या का हल है तो मेरी समस्या का भी कोई ना कोई हल जरूर होगा। जब आप ऐसा सोचने लगेंगे तो यकीन मानिए आपको समस्याओं के हल भी मिलना शुरू हो जाएंगे। सदैव प्रसन्न रहिए, जो प्राप्त है पर्याप्त है, जिसका मन मस्त है उसके पास समस्त है। यानी इस कहानी से हम लोगों को जो शिक्षा मिलती है वो बहुत ही अच्छी शिक्षा मिलती है कि समस्या किसी भी प्रकार की हो उसका सोल्यूशन जरूर है। अगर ताला है तो चाबी है, तभी ताला, पहले चाबी बनती है फिर ताला बनता है। तो इसलिए किसी भी चीज में नहीं उलझना चाहिए, एकदम धीरे शांत मन से विचार करके काम करना चाहिए और उसका समाधान जरूर निकलता है। तो क्यों ना संजय जी, हम एक सुंदर से नगमे की ओर बढ़े और फिर हमारा जो आगे की बात है वो कड़वी बात है मगर सच सत्य जरूर है, तो इस बात के लिए सब लोग उत्सुक हैं।
0: जरूर राजेंद्र जी, एक गीत की ओर बढ़ेंगे और गीत के बाद में हम सब और भी संदेश आपसे सुनने वाले हैं।

0: कभी आंखों के पानी लिखेंगे। सुनने वालों, हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे मास्टर जी, मास्टर जी जो भारत से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और मास्टर जी, आज का संदेश में आप कुछ और रखने वाले हैं, जरा हमारे सभी सुनने वाले को और जरूर सुनावे।
1: हाँ संजय जी, बहुत ही आज का जो विषय है वो बहुत ही अच्छा है। और मैं कभी नीदरलैंड्स में 3 साल के लिए टीचर था, और आज टीचर डे है, तो टीचर यानी हिंदी में बोले तो अध्यापक, यानी कुछ चीज सिखाने वाला व्यक्ति को टीचर बोलते हैं।
0: कैसे कहते हैं, गुरु पूर्णिमा आदि उस प्रकार से? हाँ, आज
1: गुरु और टीचर में थोड़ा फर्क है। गुरु होता है जो जो शिष्य, गुरु का शिष्य होता है, और टीचर के स्टूडेंट्स होते हैं। क्योंकि गुरु एक ज्ञान जो देता है, वो पूरा जो उसका शिष्य होता है वो पूरे अपने जिंदगी में उतार के और गुरु से आगे बढ़ जाता है। लेकिन जो टीचर जो ज्ञान देता है वो एक परंपरा के अनुसार देता है, और वो जो चला आ रही है परंपरा, जैसे किताबों से और अपने प्रैक्टिकल से, और गुरु अपनी शिक्षा देता है, और टीचर चली हुई जो चल रही है वो शिक्षा देता है। ये फर्क है टीचर और गुरु में। तो आज टीचर डे है, तो टीचर डे में जो है जो मनाते हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे, उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाते हैं। तो टीचर डे के दिन स्टूडेंट अपने पसंदीदा शिक्षकों के प्रति अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। जो स्टूडेंट है उनकी जो शिक्षक है, टीचर है, वो भावनाओं को व्यक्त करते हैं। इस शिक्षक दिवस पर अगर आप भाषण देने वाले हैं तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार का उदाहरण है। देश में हर साल 5 सितंबर का दिन शिक्षक दिवस के तौर पे मनाया जाता है। दिन भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को समर्पित है। उनको समर्पित है ये दिन। 5 सितंबर को ही उनकी जयंती भी होती है। इस दिन शिक्षा के जगत में उनके अतुलनीय योगदान और उपलब्धियों को याद किया जा रहा है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन प्रख्यात विद्वान, भारतीय संस्कृति के संवाहक और महान दार्शनिक। संजय जी, जहाँ पे आपको, क्योंकि टीचर डे है तो इसमें शब्द हिंदी के ज्यादा है, और आपको ना समझ आए तो आप बोल सकीला और हम फोड़ के आपको समझाएं।
0: नहीं मास्टर जी, इसमें जिस प्रकार से आपने हमें संदेश को रखे, तो जरूर इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि मुश्किल है। आप इतना सरलता से हम सबको टीचर डे यानी कि टीचर दिवस अंतर्गत में संदेश रखे। हम एक गीत के ओर बढ़े और बढ़ते हैं।
1: अभी थोड़ा
0: सा और है,
1: थोड़ा सा ये आगे है, और इसके बाद मैं ये कह रहा कि अगर कोई शब्द इसमें ज्यादा गहरा हो जो समझना आए तो आप बाद में पूछ सकते हैं मेरे से,
0: जरूर
1: तो हम उसको समझा ही सकेला। ज्यादा हिंदी है क्योंकि टीचर डे है, तो हिंदी हिंदुस्तान के अनुसार हिंदी ज्यादा गाढ़ा है। तो इस अवसर पे, या शिक्षक योगदान भारी व्यक्त करने का दिन है, इस अवसर पे हम अपने शिक्षकों के अथक समर्पण और अटूट प्रयासों के लिए अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। शिक्षक दिवस के दिन स्कूल और कॉलेजों में विशेष कार्यक्रम आयोजित होते हैं, जिसमें स्टूडेंट्स टीचर पर स्पीच देते हैं। स्कूल को निबंध प्रतियोगिताएं होती है। स्टूडेंट अपने पसंदीदा शिक्षकों के प्रति अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। इस शिक्षक दिवस पर अगर आप भाषण देने वाले हैं तो इस प्रकार से दे सकते हैं कि आज हम सब यहाँ आज शिक्षक दिवस के अवसर पर एकत्रित हुए हैं। आप सभी को शिक्षक दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। शिक्षक हमारे जीवन का स्तंभ और मार्गदर्शक होते हैं। वह अपना समय देकर हमारे जीवन को संवारते हैं और आगे बढ़ाते हैं। जिस तरह मिट्टी को तराश कर कलाकृति तैयार करने के कार्य कुम्हार करता है, कुम्हार यानी मिट्टी का बर्तन बनाने वाला, वैसे ही शिक्षक हम बच्चों में निखार लाते हैं, हमें संवारते हैं। शिक्षा न सिर्फ हमें शिक्षा देते हैं, बल्कि वह हमेशा हमें अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करते रहते हैं। उनकी कई बातें हमारे जीवन को निखारती है। साथियों, इस दिन हमें डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को याद कर उन्हें नमन करना चाहिए, जिनकी जयंती 5 सितंबर के दिन शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 5 सितंबर शिक्षक दिवस का ही दिन उन्हें ही समर्पित है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन देश के पहले उपराष्ट्रपति और महान शिक्षावाद, भारतीय संस्कृति के संवाहक, प्रख्यात शिक्षाविद और महान दार्शनिक थे। सर्वपल्ली राधाकृष्णन खुद एक बहुत अच्छे टीचर थे। 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु के छोटे से एक गाँव में तिरुमन्नी में जन्मे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को 27 बार नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया था। 1954 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अब मैं बताता हूँ उस किस्से के बारे में जिसकी वजह से उनके जन्मदिन को शिक्षक दिवस के तौर पर चुना गया। एक बार उनके छात्रों ने आदर सम्मान से उनसे पूछा कि क्या उन्हें उनके जन्मदिन पर कोई गिफ्ट दे सकते हैं और उनका जन्मदिन मना सकते हैं, पर डॉक्टर राधाकृष्णन जी ने छात्रों से उपहार लेने से मना कर दिया और कहा कि वे इस दिन को शिक्षक दिवस के रूप में मना सकते हैं। जब बाद में उनका निधन हुआ तो उन्हें श्रद्धांजलि व सम्मान देने के लिए उनके जन्मदिन 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाए जाने का फैसला लिया गया। शिक्षक हमारे समाज का निर्माण करते हैं, वही हमारे मार्गदर्शक होते हैं। शिक्षक का स्थान माता पिता से भी ऊंचा होता है। माता पिता बच्चे को जन्म जरूर देते हैं, लेकिन शिक्षक उसके चरित्र को आकार देकर उज्ज्वल भविष्य की नींव तैयार करता है। इसलिए हम चाहे कितने भी बड़ी क्यों न होने जाए, हमें अपने शिक्षकों को कभी नहीं भूलना चाहिए। यकीन मानिए, हमें जीवन के हर मुश्किल और अच्छे मोड़ पर टीचर्स की सिखाई बातें याद आती रहेंगी। एक कुम्हार जैसे मिट्टी के बर्तन को दिशा देता है, वैसे ही टीचर हमारे जीवन को संवारते हैं। टीचर की हमें प्रेरणा के स्रोत हैं, जो हमें हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। मैं अपने भाषण समापन की अच्छी शायरी के साथ चाहूंगा, गुरु बिन ज्ञान न होत है, गुरु बिन दिशा अजान, गुरु बिन इंद्रिय न सदे, गुरु बिन बड़े न शान। यानी गुरु का इसका मतलब है कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता है। गुरु बिना जो दिशा है वो अजान नहीं हो सकती, ज्ञान जानना दिशाएं नहीं जाने जा सकती है। और गुरु के बिना इंद्रियां, जो हमारी इंद्रियां हैं पंच इंद्रियां, वो सद्धि नहीं है, और गुरु के बिना शान भी नहीं है। इसलिए जो शिक्षक दिवस है उसको हमें बड़ी धूमधाम से उल्लास के साथ मनाना चाहिए। और जिन ने हमको शिक्षा दी है और हम आज इस स्तर पे पहुंचे हैं, उनको जरूर याद करना चाहिए। तो फाउन हिंदुस्तानी रेडियो की तरफ से सब लोगों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं चाहता हूं कि शिक्षक हर किसी का टीचर होते हैं, और वो अपने टीचर को जरूर नमन करें और उनको बड़े प्यार से कुछ शब्दों के साथ उनको समर्पित करें।
0: राजेंद्र जी, बहुत अच्छा रूप से आपने शिक्षक दिवस के अंतर्गत हम सभी को समझाए। ये भी है कि शायद कितने लोग इसके बारे में नहीं जानते होंगे, शायद नहीं जानते थे, तो अब इस बात का स्पर्श हो गया ना।
1: हाँ, अब सब लोग जो इस यही तो कहता हूँ मैं कि फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के जो कार्यक्रम है, इसका नाम ज्योति का प्रकाश है। इसका उद्देश्य यही है कि जो लोग नहीं जानते हैं, तो फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से जीवन की जो जीने की कला है उसको सीखा जाए और कैसे करना है, यही हम लोगों का उद्देश्य भी है।
0: सही बात। मैं देख रहा हूँ बबली जी भी अपना माइक ऑन कर लिया है। बबली जी
2: ना, मैं तो बस ये कहना चाहती हूँ, मास्टर जी आपको शिक्षक दिवस की बहुत बहुत बधाई हो।
0: सही बात,
1: बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को।
0: आपने हम सभी को सिखाए हैं, और यहाँ रेडियो द्वारा भी आप कितने लोगों कितने सीख रहे हैं आपसे, तो आपको भी सही बात बबली जी की, मास्टर जी आपको बहुत बहुत बधाई हो।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का।

0: वो भारत देश है मेरा, ये सुंदर सा गीत चलाया गया शिक्षक दिवस के अंतर्गत। मास्टर जी, इस गीत के बारे में आप कुछ और हम सबको सुनाने वाले हैं।
1: बहुत ही सुंदर जो आप में नगमा चलाया संजय जी, एकदम सांता जी के पिटारा से पहले निकलता था, लेकिन आज आपके पिटारा से जो निकला है बहुत ही प्रसन्न, मन प्रसन्न हो गया है। इसके जो बोल हैं, जो गुरुर ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः, इसका मतलब होता है कि गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही देव है, सब को गुरु ही शिव है, गुरु ही ब्रह्मा गुरु सब कुछ गुरु है। तो जो शिक्षक दिवस का उद्देश्य यही है आज के दिन का, कि हम लोग मान लेते हैं कि हमारे गुरु जी आज जो भी हम है वो गुरु की वजह से है। तो इसी उपलक्ष्य में आपने जो गाना सुना है, इसका पूरा मीनिंग लोगों को बड़ी अच्छी समझ में आ गया, और अब चाहते हैं कि जिसका जो गुरु है उसका प्रति उसकी श्रद्धा रहे तो एकदम सरल हो जाता है जीवन। तो इसी उपलक्ष्य में जो आपने गाना चलाया, सबका जीवन सरल हो गया और सब एकदम प्रसन्नित हो गए। अब मैं चाहता हूँ कि लोग इसी प्रकार से हर्ष उल्लास के साथ 188 देश में जहाँ प्रोग्राम सुनाया जाता है, वो भी अपने शिक्षक के प्रति फोन करें और आदर भाव से सत्कार करें और उनके प्रति जागरूक रहें कि आपने आज खाया और हम यहाँ पहुंचे हैं। तो अपने गुरु को जरूर याद करें और नमन करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद फाउन हिंदुस्तानी की सभी रेडियो को जो इस प्रकार के कार्यक्रम को सुनते हैं और अपने शिक्षकों को फोन करेंगे। फिर मिलेंगे अगली बार, तक के लिए नमस्कार।
0: धन्यवाद मास्टर जी, जो हमें शिक्षक दिवस अंतर्गत ढेर सारा संदेश को सुनाया।

0: हेलो, हमारे साथ हमारे कोलीग का साथी अनुराधा जी भी और संदेश रखने वाले हैं। तो अनुराधा जी,
1: सुनने वालों को अनुराधा का नमस्कार। संजय जी, आज मैं सभी को कुछ अच्छी बातें बताना चाहूंगी, जैसे कि सद व्यवहार ही सफलता की सीढ़ी है। सुंदर चेहरा 2 मिनट याद रहता है, ज्यादा धन 2 दिन याद रहता है, पर हमारा

0: व्यवहारु बनिए कि आपकी अच्छी आपके अच्छे व्यवहार की याद में लोगों की आंखों में आंसू आए। जो लोग ऐसी जिंदगी जी लेते हैं ईश्वर उन्हीं से प्रेम करते हैं। संजय जी, आज मैं सबको बताना चाहूँगी हमारे जीवन में ये छोटी छोटी आदतें हमारी खुशियाँ कैसे बढ़ा सकती हैं। हम जीवन में ऐसा क्या करें जिससे कि हमारा जीवन खुशहाल बन जाए। देखिए, इसको अपना जीवन खुशहाल बनाने के लिए हमें छोटी छोटी आदतें बदलनी होंगी, और अगर हम ये आदतें अपना लें तो हमारा जीवन ही बदल हम अपने जीवन को बहुत अच्छा बना सकते हैं। और जो हमारे जीवन में हम खुशियाँ ला सकते हैं, और उससे हम आनंद के साथ और प्रेम के साथ हम जीवन अपना व्यतीत कर सकते हैं। देखिए संजय जी, हर कोई खुश रहना चाहता है। इसके लिए ज़रूरी नहीं कि आपको कोई बहुत बड़ी खुशखबरी मिले तभी आप खुश हों। देखिए, आप छोटी छोटी आदतें अपना कर भी खुश रह सकते हैं। हमारी जिंदगी में खुश रहना सबसे ज्यादा जरूरी है, लेकिन कई बार हम ये भूल जाते हैं, या कभी कभी आपकी कुछ हमारी जैसे कुछ आदतें ही हमारी खुशियां छीन लेती हैं। यानी खुश रहने के लिए अच्छी आदतें अपनाना बहुत जरूरी हो जाता है। देखिए, रोज की हमारे जीवन में ये पॉजिटिव आदतें आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकती है, इसलिए इन आदतों को अपनाना ही भी बहुत जरूरी होता है। यहाँ पर हम आपको ऐसी आदतों के बारे में मैं बता रहे हैं जिसे अपना कर आप और हम खुशहाल जिंदगी बिता सकते हैं। तो देखिए, आदतें तो बहुत सारी हैं। मैं शुरुआत करने से पहले क्यों ना संजय जी एक गीत हो जाए, और फिर मैं सबको बताना चाहूंगी कि हम क्या आदतें अपना सकते हैं।
1: जरूर जरूर, एक सुंदर सा गीत मैंने और चुन करके रख चुके हैं प्लेयर पे। अनुराधा जी, हम चला देते हैं।

0: कई बार पानी मांग चुका हूँ, आप पानी क्यों नहीं देते?
1: पानी आएगा तो मिल जाएगा।
0: मुझे अंधेरे में क्यों रखा हुआ है, रोशनी क्यों नहीं?
1: जब तक लालटेन नहीं आती तुम्हें अंधेरे में ही रहना होगा।

सुंदर सा गीत हम सुने जो लता मंगेशकर जी का आवाज़ में। सुनने वालों, हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और कार्यक्रम में अनुराधा जी और भी संदेश रखने वाले हैं।

आगे बढ़ते हैं और पता लगाते हैं कि और क्या अन्य बातें हैं जिससे कि हमें हम अपना जीवन अच्छा बना सकते हैं। तो चौथी बात है, खाना खाते समय मूड का हमें अपना ध्यान रखना चाहिए, हमारा मूड कैसा है। आप पहले से ही जानते होंगे कि आपके खान पान के तौर तरीके आपके पूरे शरीर पर असर पड़ता है उसका, जैसे कार्बोहाइड्रेट, सेरोटोनिन, ये एक फील गुड हार्मोन छोड़ते हैं, वहीं चीनी और स्टार्च का कम से कम इस्तेमाल करें, इससे शरीर को कम ऊर्जा मिलती है। सब्जियां, हरी सब्जियां हो गई, बीन्स हैं, साबुत अनाज ज़्यादा खाएं, चिकन, फलियां और डेरी में हाई प्रोटीन पाया जाता है, तो प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ डोपामाइन और नॉरेपिनेफ्रिन छोड़ते हैं जो एनर्जी और एकाग्रता को बढ़ाते हैं। तो हमें अपना खान पान में बहुत ध्यान देना चाहिए, वो हमारे जीवन को अच्छा बनाता है। पांचवा है, हमें हमेशा थैंकफुल रहना चाहिए, हमें हमेशा ये सोच कर रखना चाहिए कि हमारे जीवन में बहुत, हमें भगवान ने बहुत कुछ दिया है, हमारा परिवार है, हमें प्यार करने वाले बहुत लोग हैं, तो हमें हमेशा एक तरह से थैंकफुल हमेशा रहना चाहिए। खुश रहने के लिए आप हर दिन शुक्रिया करना सीखिए कि जैसे चीज़ों को एक्सप्रेस करें, इसके लिए ज़्यादा समय देने की भी ज़रूरत नहीं है। आप जब अपना दांतों को सुबह उठते समय ब्रश करते समय उस वक्त या सुबह उठते ही ऐसा कर सकते हैं, और एक तरह से आप एक दो मिनट बस भगवान को या इस अपना एक शुक्रिया अदा करें, एक उनको बस धन्यवाद दें कि ये आपको एक अच्छा जीवन दिया है, ये जरूर करें। आप छोटी छोटी चीजें अपना कर भी खुश रह सकते हैं, जैसे ऑफिस में अपने सहकर्मी जो आपके जो कुलीग्स हैं को कॉफी की पेशकश करें, या किसी भी तरह की कोई मदद करके आप अपने चेहरे पर मुस्कुराहट ला सकते हैं। आप करेंगे तो दूसरे के लिए, पर आप उनकी मदद कर सकते हैं, किसी के लिए अच्छा काम करके आप उनका जीवन में थोड़ा सा उनके लिए खुशी लाकर आप एक तरह से आप के जीवन में आप मुस्कुराहट आ सकती है आपके लिए। तो ये एक तरह से होता है कि भाई आप अपना धन्यवाद दे सकते हैं, आप एक थैंकफुल हो सकते हैं कि आपको एक अच्छा जीवन मिला है। देखिए, हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें बहुत कुछ, हम लोगों को अपने आसपास का हमारे परिवार वाले होते हैं, हम उनसे सोचते हैं कि भाई उनसे क्या कहना कि कभी कोई अच्छा लग रहा है, कोई खाना अच्छा बनाता है, पर हम भूल जाते हैं कि हम उनकी तारीफ़ करना भूल जाते हैं। तो हमें ये बात याद रखनी चाहिए, छठा है तारीफ़ करें लोगों की, चाहे वो आपके परिवार वाले हों या आपके ऑफिस में आपके कुलीग्स हों या आपके दोस्त हों, जब भी आप उनसे मिले तो उनकी जरूर उनकी अच्छी बातें, उनको कुछ आपको अच्छा लगता है तो उसकी तारीफ ज़रूर करें। ये रिसर्च से पता चलता है कि आप जितने दयालु रहेंगे उतने ही ज़्यादा खुश रहेंगे, जितने ही आप लोगों की मदद करेंगे और लोग अच्छा व्यवहार करेंगे तो आप भी खुश रहेंगे। अपनी खुद की खुशी को बढ़ाने के लिए सामने वाले की ईमानदारी से तारीफ भी कर सकते हैं। अगर आप सामने वाले की आंख में आंख डालकर उसके काम की या उसके लुक की तारीफ करेंगे तो सामने वाले के साथ आपको भी खुशी मिलेगी। तो यह बहुत जरूरी है कि आप सच्चे दिल से किसी की तारीफ करें। और आखिरी में कहूंगी कि गहरी सांस लें। आप तनाव में हैं या आपको लग रहा है कि आप कुछ खो सकते हैं तो गहरी सांस लें,
गहरी सांस लेने से आपको एक सुकून का एहसास होगा। देखिए, तनाव महसूस करने पर ये टिप्स आप अपना सकते हैं, जैसे कि अपनी आंखें बंद करें, खुशियों के पलों को याद करें और कोई अच्छी कल्पना करें, अच्छा विचार करें। दूसरा है कि आप धीमी गहरी सांस लें और जैसे सांस अंदर करें और धीरे से सांस छोड़ें, फिर सांस अंदर लें और धीरे से सांस छोड़ें, तो इससे आपका थोड़ा सा मन शांत होगा। आप अपने मुंह या नाक से धीरे धीरे सांस छोड़ें। ये जो व्यायाम होता है, जो हम कहते हैं हम करते हैं योगा में, तो ये एक तरह से ये आपको शांत, मन को शांत कर सकता है। इस प्रक्रिया को कई बार दोहराएं जब तक कि आप खुद को शांत महसूस ना करें। अगर आपको धीमी सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो हर सांस के साथ 5 तक गिनती करें, तो इससे आपको पता होगा कि आप ये धीरे धीरे 5 गिनती करें, फिर 10 गिनती करें, ये धीरे धीरे आप गिनतियां बढ़ाएंगे। और आप जब भी आप थोड़ा सा आपको चिंता हो रही है या कुछ परेशानी है, तो बस धीरे में से आप सांस लें और आप देखेंगे कि आपका तनाव कितना कम हो जाता है। दुखी पलों को भी स्वीकार करना सीखें। देखिए, अच्छी और बुरी चीजें सभी के साथ होती हैं। अगर आप अच्छी बातों के साथ बुरी बातों को भी अपनाने की आदत बना लेंगे तो आपकी खुशियां डबल हो जाएंगी। अगर आपको कोई बुरी खबर मिलती है या कोई आपसे कोई गलती हो जाती है, तो ऐसा लगता है कि आप किसी मुसीबत में हैं, तो भी खुश रहने की कोशिश करें। देखिए, दुख की भावना को स्वीकार करें, एक पल के लिए खुद को दुख का एहसास करने दें। ये नहीं कि उसको ना नहीं एहसास करें, आप दुख का एहसास करें, फिर ये सोचें कि आप इस दुख के साथ रह सकते हैं क्या। और ये जब आप सोचेंगे, इसका चिंतन करेंगे, तो आपको तुरंत ही इसका जवाब मिल जाएगा। तो ये देखिए दोस्तों, आज अपने ये जो छोटी छोटी मैंने जो आपको आदतें बताई हैं, अगर ये आप छोटा सा बदलाव अपने जीवन में करेंगे, तो आपको आपको देखिए आप ये इस ये आपको बहुत जीवन में इसका लाभ होगा। आप अपने जीवन में बहुत खुशियां ला सकते हैं और ये एक खुशहाल जीवन रहने से आपके आसपास आपके परिवार वाले दोस्त रिश्तेदार सभी के जीवन में बदलाव आता है, क्योंकि एक इंसान के खुश होने से ये आप दूसरों को भी खुशी बांट सकते हैं। संजय जी, ये देखिए, मैं आशा करती हूँ सभी को ये बातें पसंद आई होंगी। और आइए आगे गीत सुना जाए।

तो सुनने वालों, जैसे कि अभी आपने सुने, थोड़ा से मुस्कुराना कोई गलत काम नहीं है। और अनुराधा जी का सब संदेश आपने जिस प्रकार से सुने, उसे जरूर और अपने जीवन में उतारिए ताकि अपना जीवन में खुशियाँ आ सके।

0: सनम।
1: ये कहना चाहूंगी कि तनाव में केवल समस्याएं जन्म ले सकती हैं, समाधान खोजना है तो मुस्कुराना ही पड़ेगा। और इसी के साथ सभी सुनने वालों को अनुराधा का नमस्कार।

मजबूरियां देर रात तक जगाते हैं और बहुत कुछ समझाते हैं, जिम्मेदारियां सुबह जल्दी उठाते हैं और खुशियां ही खुशियां लेकर आते हैं। सभी सुनने वालों को मेरी ओर से नमस्कार।

0: सुनो अनुज, कहते हैं कि जिंदगी छोटी नहीं होती है, लोग जीना ही देरी से शुरू करते हैं। जब तक रास्ते समझ में आते हैं तब तक लौटने का वक्त हो जाता है। बस यही जिंदगी है दोस्तों।
1: सोच ले फिर से एक गरीब दीवाना।
0: हमारे आज के कार्यक्रम में हमारे सहयोग साथी बबली आसरा जी, अनुराधा जी और राजेंद्र सिंह जी, जो भारत से हमारे साथ कनेक्ट रहे। मैं हूँ आपका सेवक संजय और यही आशा रखता हूँ कि कुछ न कुछ संदेश आप तक पहुँचे होंगे।
1: सनम चाहे जाए जिया तेरी कसम लागी छूटे ना।
0: लोग अक्सर कहते हैं कि जिंदगी रहेंगे तो मिलेंगे, मगर एक अच्छे सच्चे दोस्त ने कहा है कि मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। सभी को एक शुभ दिवस। नमस्कार।

आपको मुबारक हो, बधाई हो। कहते कि आज से बेहतर कुछ भी नहीं।